0: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेल यस, मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 एफएम के जरिए, हम के जरिए। हम एक वो डायलॉग है ना कोई मूवी का, हम है यम, यम है हम है यम, बट यहाँ पे ये मैं यम नहीं हूँ। मैं आपको लेने नहीं, आपको हंसाने आया हूँ, आपको एक से बढ़कर एक चुटकुले सुनाने कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेन हो, ये सारी मेरी कोशिश रहेगी, तो आप बस बने रहिए। वैसे ये डायलॉग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम है यम, यम है हम, या आई थिंक चित्रकूट और यमराज का कोई सीन होता है जिसमें कादर खान जी यमराज का रोल करती है। कौन सी फिल्म का गाना है, सॉरी गाना नहीं डायलॉग है ये, कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये मुझे बताइए 5599 पे। बढ़िया से ऐसी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे ऐसे सवाल मैं करूंगा आप सभी से जिसे आपको मुझे बताना है ऑन 5599 पे। वैसे आप कॉल भी मुझे करेंगे जब जब मैं बोलूं 0800-004-66 पे, होम सिक रेमेडीज की टॉपिक के लिए मैं थोड़ी देर में आप सभी के लिए बातें लेके आने वाला हूं, जो आप मुझे कॉल करेंगे 0800-004-66। यस, याद हो गया मेरे को। ये वैसे कभी रटा है आपने कोई चीज, सबसे लंबी चीज क्या रटी थी बताएं, 5599 नंबर, थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन होम सिक रेमेडीज याद रखिए।
1: बचाओ क्या,

0: वेल लव मेरा हिट हिट, ये गाना आपने सुना है बाय नीरज श्रीधर और तुलसी कुमार की आवाज में। एक नंबर गाना, एक नंबर गाना। वैसे एक नंबर से याद आया, आपको किसी से हमें बात करवानी है। एनी आइडिया किससे हो सकती है? बिकॉज ऑफकोर्स हम जब भी आपसे बात कराते हैं, यानी कि हम जब भी आपसे बात कराते हैं तो किसी ना किसी का तो शो होता ही है, राइट? वेल यस, इफ यू रिमेंबर, इफ यू ऑल रिमेंबर, ऑल गरबा लवर्स रिमेंबर, कल क्या खास होने वाला है? कल होने वाला है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा दिन है हम ऑकलैंडर्स के लिए। सिर्फ ऑकलैंडर्स के लिए नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड के लिए, बिकॉज टू स्टार्ट विथ, ऑकलैंड इज द फर्स्ट सिटी जहां पे ये वर्ल्ड टूर होने वाला है। मैं कौन से वर्ल्ड टूर की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन यस अभी हम उन्हें फोन लगाते हैं जिनकी वजह से आपने इतने महीनों से एक्साइटमेंट बढ़ाए रखी है, टिकट्स खरीदे हैं, एंड फाइनली जो दिन है वो आ चुका है कल। मैं बात कर रहा हूँ राज गढ़वी की। वेल यस, राज गढ़वी आ चुके हैं ऑकलैंड और अभी ऑन एयर आपसे मैं बात कराने वाला हूं। बट यस, बिफोर उन्हें मैं फ़ोन पे जस्ट लेट यू नो कि आप 1 अगस्त को यानी कि कल महात्मा गांधी सेंटर पहुंच जाइए। टिकट्स बहुत ही कम बचे हुए हैं, जल्दी से जाके eventstickets.co.nz पे जाके आप टिकट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं राज भाई से। हेलो राज भाई, क्या हाल है?
1: हेलो हेलो, एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? कैसे
0: मैं भाई? एकदम बढ़िया हूँ। केम छो राज भाई, मैं ना गुजराती से शुरू कर रहा हूँ। केम छो राज भाई,
1: एकदम मजा।
0: अरे वाह, क्या बात, आपकी आवाज सुन के एक्चुअली लग रहा है कि कल तो मतलब बहुत ही एकदम हिस्ट्री क्रिएट होने वाली लग रहा है मेरे को।
1: बिल्कुल।
0: वैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप बताइए, ऑकलैंड में सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए यहाँ की हवा आपको कैसी लग रही है?
1: बहुत ही बढ़िया, और यहाँ का जो वेदर है, एटमोस्फियर है, वाइब है, वो बहुत ही अच्छा। हमें सब बोलते हैं कि भाई न्यूजीलैंड है वो स्वर्ग है। और पालक टूर 2026 का पहला शो न्यूजीलैंड में और ऑकलैंड में होने जा रहा है, श्रीमेंट और फ्रांसिस ग्रुप द्वारा। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है महात्मा गांधी सेंटर में। तो 1 अगस्त को बस आनंद करना है गरबा का, और सब गुजराती नहीं, वैसे तो ऑल जो गरबा लवर्स है उनको बुला के आनंद करना है गरबा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे सुनने वाले को पता है कि मैं गुजराती नहीं हूँ, बट मैं बचपन से जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, फेवरेट जो फन है ना, वो गरबा मुझे बहुत पसंद है। मैं उदयपुर से हूँ वैसे, जस्ट इन केस आपको नहीं पता हो, ऑब्वियसली नहीं पता होगा बट मैं उदयपुर से हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से गरबा का आयोजन किया जाता है। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो बहुत ही बड़े फैन है। बट थैंक यू सो मच बताने के लिए। आपका जो पहला टूर है वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड से शुरू होने वाला है, वलप टूर, जो कि वर्ल्ड टूर है, वालप टूर है वो शुरू होने जा रहा है, जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड इज द फर्स्ट सिटी। बहुत ही बड़ी बात है। वैसे राज भाई, इतनी दूर आप गुजरात से लेकर यू नो दुनिया भर में गरबा का जो मैजिक है वो आप फैला रहे हो, ऑकलैंड के फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: जी, पहली बार आ रहा हूँ ऑकलैंड में, और गरबा नाइट है तो ऑब्वियसली गरबा लवर जो हमारे गुजराती है, सब गुजराती है या हिंदी है, जो भी जो गरबा लवर है वो प्लीज कल आप सब आइए गरबे में, और बहुत ही आनंद करना है। आपके फेवरेट सॉन्ग्स है, आपके फेवरेट जो गरबा है सब मैं गाने वाला हूँ और आपको आनंद कराने वाला हूँ, तो आप प्लीज प्लीज सब आइए, वेलकम है मेरी टीम की ओर से और सब इवेंट की ओर से वेलकम है आप सबको, क्या आप आइएगा।
0: परफेक्ट, डेफिनेटली। मेरे को नहीं लगता कोई मतलब कहता ना कि या तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होगा इस वजह से नहीं आ पाएगा, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल विल लव टू कम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल। बट यस, कल रात बहुत ही बड़ा दिन है, महात्मा गांधी सेंटर में इवेंट होने जाना है, तो उनके लिए कोई स्पेशल सरप्राइज है आपकी तरफ से? कुछ हिंट दे सकते हैं आप?
1: सरप्राइज में 2-3 सरप्राइज है, लाइव ही होगी वो, क्योंकि सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रखना।
0: एग्जैक्टली,
1: और लाइव ही मजा आएगा उनके लिए आना पड़ेगा।
0: डेफिनेटली। तो जो सुन रहे हैं मुझे और राज भाई को सुन रहे हैं, जल्दी से आप अभी टिकट ले लीजिए, अगर लिया नहीं है जल्दी से जाइए और टिकट ले लीजिए, बिकॉज बहुत सारा सरप्राइज एज ही सेड है, तो यस बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे राज भाई, आप ऑब्वियसली इतने शोज कर चुके हैं, वर्ल्ड टूर पहले भी हो चुका है, यू आर डूइंग इट अगेन एंड पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया, आपने हर जगह क्राउड जो है अलग देखा होगा, सबसे स्पेशल और सबसे खास क्राउड आपको कहाँ का मजा आता है?
1: जी केतन भाई, मेरी लास्ट ईयर लंदन में टूर हुई थी, और ये फर्स्ट मेरी वर्ल्ड टूर है, मैं बताते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली फर्स्ट टूर है और पहला ही शो ओकलैंड में है, और लास्ट टाइम लंदन में शो किया था। ऑब्वियसली बात है कि भाई 6 महीने के अंतर पर या 7 महीने के अंतर पर गुजराती आर्टिस्ट जो है वो फॉरेन की धरती पर आके और गरबा गाते हैं, तो फॉरेन की धरती का जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और सिमिलरली गुजराती का जो डायरा होता है वहाँ पे भी एक्साइटमेंट ज्यादा हुआ है क्योंकि ये कल्चर है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्साइटमेंट तो सभी जगह होता है।
0: परफेक्ट। वेल, कोई ऐसा गाना है आपके जहन में जो आपको पता है कि ये तो आप डेफिनेट, आई नो हो सकता है ये गाना आपके सरप्राइज एलिमेंट में ही हो, बट जस्ट इन केस अगर वो सरप्राइज एलिमेंट से हटके भी हो तो बताइए कोई ऐसा गाना जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे तो क्राउड विल बी लाइक बैंग ऑन, कोई ऐसा गरबा वाला गाना?
1: जी मेरा फेवरेट है और जो सरप्राइज है केतन भाई वो तो मैं सरप्राइज ही रखूंगा क्योंकि उनके लिए आना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं क्राउड से ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इसलिए
0: right.
1: तो एक गरबा जो मेरा फेवरेट है मैं गा देता हूँ।
0: हाँ जी।
1: हे साई गो रे गो वाली ओ रे मारो वाली डो रे गो वाली ओ, ए साई गो रे गो वाली ओ रे मारो वाली डो रे गो वाली ओ, हूँ गोवा लोन गिरनी रे मारी श्याम राधानी जोड़ ली,
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या मजेदार आवाज है, क्या मजेदार एनर्जी है, क्या मजेदार आपका मतलब वो हुनर है, मतलब बहुत ही मजा है, बहुत ही बढ़िया लगा सुन के। मैं तो डेफिनेटली ये शो के बाद मैं बोलने वाला हूँ सैंडी को कि सैंडी मुझे ब्रेक लो, मुझे जल्दी से जाना है, गरबा के डांडिया लेके आने हैं, मुझे कल के शो में जाना है। बट कुल बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी,
1: ये तो अभी लोकगीत ही मैंने गाया, अभी गरबा तो वो ये ट्रेंड क्या ट्रेलर था ये?
0: डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ टीजर था ये शायद, आई थिंक, क्योंकि ट्रेलर और जो मेन शो होगा वो तो धमाकेदार होने वाला है। बट थैंक यू सो मच राज भाई आपके टाइम के लिए। मैं स्वप्निल भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्वप्निल भाई साथ में है आपके?
2: यस सर, बताइए।
0: स्वप्निल भाई कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: थैंक यू। वेल, आप कुछ अपडेट देंगे रिगार्डिंग द टिकेट्स? अभी मतलब लोगों को ये है कि भाई उनको बताना पड़ेगा भाई कि वो सोच रहे हैं कि टिकट है भाई, हाउसफुल होने वाला है बहुत ही जल्द, तो कुछ आप अपडेट देंगे?
2: बस मेरे गरबा लवर सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आ जाइए फिर से, आपके लिए एक और बेहतरीन गरबा नाइट लेके हम ऑकलैंड में आ रहे हैं हर साल की तरह इस तरह भी, और ये सैटरडे है, छुट्टी का दिन है तो सबको एंजॉय करना है, बस कोई वर्किंग डे कुछ नहीं है, बस आओ 5 घंटे 4 घंटे जो भी है वो आओ, अपना टाइम निकालो और एंजॉय करो, बस वही है। और सबसे बेहतरीन चीज तो वो है जो राज भाई ने बताया कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, वर्ल्ड टूर का फर्स्ट शो भी ऑकलैंड से, और सबको पता है जैसे ऑकलैंड में किसी के फर्स्ट शो जाता है वो डेफिनेटली इज गोइंग टू द अनदर लेवल, तो आइए बहुत मजा आएगा।
0: परफेक्ट, थैंक यू सो मच स्वप्निल भाई एंड राज भाई आपके टाइम के लिए। यू हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करिए ऑकलैंड में, एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। जस्ट टू लेट यू नो, आप जल्दी से जाइए और eventstickets.co.nz पे जाके टिकट ले लीजिए बिफोर इट गेट्स हाउसफुल। सो यस, अभी जाइए और टिकट ले लीजिए फॉर 1st August, कल के दिन महात्मा गांधी सेंटर में इवेंट होने वाला है।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Maorima, every day we make choices. Choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. brought to you by the Electoral Commission.
5: If you're at the fit-out stage of the build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances, and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
6: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
7: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ.
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: Ready for a career you can build on? EarnLearn can help. Whether you're starting out, changing careers, or ready to trade screen time for tool time, an EarnLearn apprenticeship could be your next step. Earn while you train in electrical, plumbing, gas fitting, or drain laying. Build real skills on the job and get personalised support along the way. Get your career on the tools with EarnLearn. Visit earnlearn.ac.nz or call 0800 EARN IT today.
13: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज ट्रेड-इन्स वेलकम फाइनेंस भी अवेलेबल है फ्यूल पर पैसे बचाइए ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. Yes, बहुत सारी बातें करने, कुछ मैसेजेस आए हैं. शो की शुरुआत में मैंने कुछ बात कही थी कि कौन कौन यहाँ पे रटता था, ये सब है. और हाँ, वो जो डायलॉग था ना कि हम है यम, यम है हम, तो उसका जवाब आ चुका है. तकदीर वाला, तकदीर वाला इज द फिल्म जिसमें कादर खान भी थे और ये जन्ना व्यास, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है. थैंक यू सो मच बताने के लिए. वैसे एक और मैसेज आया है, भाई सारे एग्ज़ाम रटते थे. एक्चुअली हाँ ये है, मैं मतलब जिस स्कूल में पढ़ा था अनटिल 8th स्टैंडर्ड इंडिया में, वहाँ पे रटवाया ही करते थे और मुझे लगता था कि वही होता है. लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में जब मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, बिकॉज वो स्कूल जो था वो 8th स्टैंडर्ड तक ही था, तो वहाँ पे एकदम ही उल्टा कॉन्सेप्ट था, एक ही उल्टा, और जो कि बहुत ही आगे चल के मुझे समझ में आया कि हाँ सही था. क्योंकि मुझे 9th स्टैंडर्ड के बाद जो भी पढ़ा है वो मुझे याद है, बट उससे पहले वाला जो भी है वो मुझे कुछ याद नहीं है. यानी कि रटा हुआ तो आपको तब तक याद रहेगा जब तक आप जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते या फिर जब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो सिखाया जाता है वो अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो डेफिनेटली आप हमेशा याद रखते हैं. पर कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम है जो आपने रट के ही पास किया होगा और आज बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हो आप, बताएं मुझे 555-999 पे. मैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड लेके आऊँगा थोड़ी देर में. 80s के रेट्रो गाने.

चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज़ एंड सीज़ अप्लाई

0: चटनी शॉट्स। चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करते हैं फटफट खबर की। सबसे पहले वेदर से बड़ी खबर। साइंटिस्ट का कहना है कि एल नीनो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और न्यूजीलैंड पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट भी पड़ने वाला, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू द साउथ पोल। आने वाले महीनों में कुछ एरियाज में ज्यादा ड्राई कंडीशन, स्ट्रांग विंड्स और वेदर एक्सट्रीम्स देखने को मिल सकती है। पॉलिटिक्स से अपडेट। द अपॉर्चुनिटी पार्टी अपोनेंट पार्टी ने 2026 जनरल इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। पार्टी का फोकस है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, टैक्स रिफॉर्म और क्लाइमेट पॉलिसीज पर रहेगा। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क ने विंस्टन पीटर्स के चाइनीज बॉर्न एमपी पर किए गए कमेंट की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान उनके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। वेदर अपडेट दोबारा। साउथ आइलैंड के कई हिस्सों के लिए थंडर स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स और बिटर कोल्ड की वार्निंग जारी की गई है। मेट सर्विस ने कुछ एक्सपोज्ड एरियाज में 100 किलोमीटर पर आर तक के विंड गस्ट की पॉसिबिलिटी बताई है। ऑस्ट्रेलिया से एक शॉकिंग सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ब्रिस्बेन में एक कार हवा में उछलकर सीधे एक बस के साइड में जाके टकराई, यानी कि आधी अंदर आधी बाहर। इंसिडेंट में कई लोग इंजर्ड हुए हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। और स्पोर्ट्स से शानदार खबर। डेविड लिटी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर न्यूजीलैंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड्स के साथ ये गोल्ड अपने नाम किया।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
0: हम
1: दिल से

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
3: Ayo, G-Funk.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो.
2: और गानों में जस

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 50% चांस है बारिश के आज, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर भी रहने वाला है और 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे ओवरऑल काफी क्लाउडी और रेनी ही रहने वाला है, बस सनसेट होगा 5:36 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: किरण, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है। बस यस, आप बने रहिए बिकॉज आज के दिन इस आर में भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट आ चुका है। एक लेटेस्ट खबर भी आई है रिगार्डिंग विंसेंट पीटर, उन्होंने क्या बोला है, क्या ऐसा अपशब्द या फिर अपशब्द तो नहीं बट क्या ऐसा रेसिस्ट रिमार्क किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सो यस, आप बने रहिए, सुनते रहिए इस आर में से बॉलीवुड से लेके आपको ऑब्वियसली मैं बता नहीं पाया लास्ट आर में रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यस, यू स्टे ट्यून्ड, कीप गेटिंग ऑल द अपडेट्स फ्रॉम अस, आप बस हमें सुनते रहिए 104.2 FM के जरिए एंड ऑफ कोर्स 87.7 इफ यू आर फ्रॉम सिटी लिसनिंग टू अस फ्रॉम सिटी। हम इट इज एंड लंच बॉक्स इट इज।
0: बचाओ क्या,

0: Well, yes, one of the most, popular song of 2000 ka, century, jab shuru hui thi, 21st century, tab ye aaya tha na gaana, shayad, koi kahe, kehta, mere khayal se early 2000 mein aaya tha. Lekin ek gaana wo yaad hai ab, wo, dekho, 2000, zamana aa gaya, wo gaana bhi kya sahi tha na, like, nostalgic feel, aap mujhe bataiye, ki, wo gaana jab agar aapne suna hai, to, क्या उम्र हुआ कर मतलब क्या उम्र होगी आपकी उस टाइम. आई नो यहाँ पे शायद आप उम्र नहीं बताना चाहते, ये बता दीजिए कि कौन से स्टैंडर्ड में थे या क्या कर रहे थे. मुझे बताया ये गाना मैंने पहली बार जब सुना था तो बेसिकली हमारा एनुअल फंक्शन, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैं कौन सी क्लास में था, बट आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में हुआ हूँगा मैं. और ये जब गाना आया था, देखो 2000 ज़माना आ गया, मिलेनियम ऐसा कुछ था गाने का नाम, मैं ढूंढता हूँ यार. बहुत ही बढ़िया था. तो यस, मैं तो उस क्लास में था. आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे थे. हमारा तो एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन हो रही थी तो वहाँ पे ये गाना बहुत चला था, सो दैट वी कैन परफॉर्म ओवर देयर. बट यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में ये रहा, ये रही बात. जब रॉयल विक्टोरिया, आज के दिन की बात है ये, 31 जुलाई, यानी कि आखिरी दिन, और आखिरी दिन ऑफ द मंथ तो है ही है, साथ में आखिरी दिन ऑफ द वीक भी है. 1843 की बात है आज के दिन, जब वेलिंगटन के मैनर स्ट्रीट पर इसकी नींव जो है वो रखी गई थी, रॉयल विक्टोरिया थिएटर. जी हाँ, वायराव एफ्रे, एक ऐसा वायलेंस वाली जो है ना सिचुएशन हुई थी वहाँ पे, ठीक 6 हफ्ते बाद इस थिएटर्स के बनने वहाँ के सेटलर्स के लिए एक काफ़ी हौसला जो है वो बढ़ाने वाले कदम जो थे उन्होंने लिए थे, जिससे एल्डरमैन विलियम लियोन ने एक एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी बताया. और इसे शिप होटल के मालिक जॉन फुलर ने होटल के पीछे बनाया, और ये 12 सितंबर को खुला, यानी कि आज के दिन पहली नींव रखी, पहला फाउंडेशन जो बोलते हैं ना कि हमारे मतलब इंडिया में जैसे बोलते हैं फाउंडेशन, ईंट रखी, तो वैसे इन्होंने रखी थी और 12 सितंबर को ये पूरा बन चुका था. ये एक सिंपल लकड़ी की बिल्डिंग थी जिसमें व्हेल ऑयल गैस से रोशनी की गई थी. वाओ, व्हेल ऑयल, डू यू रिमेंबर एनी प्लेस जहाँ पे, जो सिटी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ न्यूजीलैंड में, जो व्हेल के ऑयल की हंटिंग बोलें या फिर क्या वो चीज़ वहाँ पे करते थे, एनी आइडिया कौन सी वो सिटी है जहाँ पे ये चीज़ हुआ करती थी. और वहाँ पे एक्चुअली एक स्टैचू भी बना हुआ है व्हेल का. जी हाँ, आजकल वैसे नहीं आती वहाँ पे व्हेल, बट यस आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे. पर यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑयल तो यूज़ हुआ था साथ में. हालांकि 1845 में वेलिंगटन के दूसरे थिएटर ब्रिटानिया सलून खुलने के बाद रॉयल विक्टोरिया थिएटर बंद हो गया था. ऑकलैंड का पहला थिएटर फिट्ज़रॉय 1844 में खुला था, ये था यहाँ पे. अब मुझे बताइए फिट्ज़रॉय जो थिएटर है वो कहाँ पे है ऑकलैंड में. 5599 से नंबर.
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
2: हाँ.

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: इफ इट्स सेविंग्स यू वांट, इट्स सेविंग्स यू विल फाइंड एट ब्रिस्कोज विद सुपरसाइज्ड स्टोर-वाइड सेविंग्स फॉर द होल हाउस अंटिल संडे। सो हरी इन, ग्रैब अ बास्केट और ट्रॉली एंड बैग सुपरसाइज्ड स्टोर-वाइड सेविंग्स ओनली टिल संडे एट ब्रिस्कोज। सी ऑनलाइन फॉर टीज़ एंड सीज़।
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
4: Good news, tradies! This Saturday, Mitre 10 Mega Botany आइए for a free sausage, supplier demos on site और giveaways, range, convenience और आपकी trade की हर जरूरत. Saturday morning trade breakfast, सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
0: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: क्या बनाते हैं इन कबाब के स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।

0: Lunchtime Rant Line.
1: वेल इस लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 5599 पे. आप बता सकते हैं कुछ ऐसी घटना अगर आपके साथ घटित हुई हो तो बताइए मुझे. वैसे इस पार्लियामेंट में ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में मैं बता देता हूं. न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेलन क्लार्क ने न्यूजीलैंड फर्स्ट लीडर और फॉरेन मिनिस्टर विंसन पीटर द्वारा चाइनीज बॉर्न ग्रीन MP लॉरेंस जू नैन को अपने देश वापस जाओ, गो बैक टू योर ओन कंट्री कहने पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इस तरह के बयान उनकी सैकिंग को न्योता देती है, यानी कि इनविटेशन देती है. वैसे पार्लियामेंट में हैकलिंग के दौरान पीटर्स ने जू नैन को निशाना बनाया और चाइना के लोगों के बारे में भी अपमानजनक जो कुछ बातें हैं वो कही थी, जिस पर चाइना के एम्बेसी ने न्यूजीलैंड सरकार के सामने कड़ी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है. क्लार्क ने इसे प्रवासी जो माइग्रेंट कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए काफ़ी डरावना बताया है. बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स शॉकिंग तो है ये, किसी आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ हो रही है एंड देन यू आर लाइक लिसनिंग टू इट, दिस इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल. वैसे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर पीटर सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के साथ जो उनका रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब होने से बचाने के लिए ये सब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए. जबकि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने अब तक इस बयान पे कोई टिप्पणी अपनी नहीं दी, यानी कि अपना जो पॉइंट है वो अभी तक तो रखा नहीं है. देखते हैं अभी क्या होता है इस पे. आपको क्या लगता है जो उन्होंने विंसन पीटर्स ने जवाब दिया है दैट गो बैक टू योर ओन कंट्री, आपका इसमें क्या है, लाइक यू नो व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दिस, आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं. बट यस, आप लंच टाइम रेंट लाइन में और भी चीजें बता सकते हैं. एक मैसेज आया है मुझे, दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल वेयर वी ऑल माइग्रेंट्स आर लिविंग टुगेदर, दिस इज मल्टी कल्चर्ड कंट्री एंड नॉट समवंस इंडिविजुअल. इन्होंने नाम तो नहीं लिखा अपना. कोई और भी है अगर यहाँ पे जवाब देना चाहे मुझे तो बता सकते हैं कि आई मीन दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल कि आप कुछ ऐसे करते हैं, आप अपने ही देश में बुलाते हैं एंड देन यू नो सम पीपल हैव टू हियर दैट यू डोंट बिलोंग टू दिस, दिस इज़ रियली रियली अनोइंग समटाइम्स. आप मुझे बताइए अगर आपकी कोई इसमें राय है, कुछ आप बात करना चाहते हैं मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे, या फिर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 5599 पे. एक और मैसेज आया है राज का, वो कहते हैं कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल. और भी है क्या इसमें? नहीं, इतना ही है. ओके, इतना ही मैसेज भेजा इन्होंने, कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल राज भाई ने लिखा है. बट थैंक यू सो मच यार, आप अभी अगर देना चाहें तो आप मुझे 5599 पे भेजते रहिए मैसेज. कुछ अगर आपका सुझाव है यहाँ पे या फिर कुछ आप कहना चाहते हहैं, फील फ्री टू ड्रॉप सम मैसेज ऑन 5599 पे.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। सारे सपने मोहित चौहान की आवाज में। वैसे सपने से याद आया, आप में से कितने लोगों ने ये एक नई वेब सीरीज है वो देखी है, सपने वर्सेस एवरीवन। यार ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इतनी पसंद आई है। एंड इनफैक्ट IMDb पे, आई डोंट नो इफ दिस इज द वेरी फर्स्ट वेब सीरीज ऑफ इंडिया और ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव नो आइडिया, बट सारे वेब सीरीज में जितने भी एपिसोड, उन सभी को एक, मतलब 9 out of 10 से ज़्यादा ही मिले हैं आउट ऑफ 10, इतनी बढ़िया रेटिंग मिली है। फिर मैंने देखा, यार ऐसा क्या है, मैंने पहला सीजन ऑलरेडी देख रखा था, इट वॉज विच वॉज अ गुड स्टार्ट, एंड आई वॉज की वेट तो कर रहा था कि यार आगे क्या होगा। बट अभी का जो मैंने देखा है यार, सही में मतलब अब तो मैं और एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। यूजली क्या होता है कि पहला सीजन कैन बी सो ग्रेट बट सेकंड सीजन इज़ नॉट, इसका उल्टा है। आई मीन ये नहीं कहूँगा कि पहला सीज़न अच्छा नहीं था, पहला सीज़न डेफिनेटली अच्छा था बट ठीक था, ऐसा नहीं था कि मैं वापस देखना चाहूँ। बट ये सेकेंड सीजन वॉज लाइक, यार क्या एक्टिंग करी यार। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना सही मैं मानता हूँ दैट ये जो वेब सीरीज़ आने लगी उससे काफ़ी ऐसे जो छुपे हुए रुस्तम होते हैं, छुपे हुए जो एक्टर्स होते हैं, उनको मौका मिल रहा है थ्रू वेब सीरीज़। क्योंकि वेब सीरीज़ में वो कहते हैं कि लोग सिफारिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ चलेगी तभी जब आप एक्टिंग अच्छी करोगे। तो यस यार, एक से बढ़कर एक एक्टर है, खुद जो मेन लीड पे है उनका नाम मेरे को याद नहीं, मैं अभी देखता हूँ, सर्च करता हूँ, वो खुद भी डायरेक्टर है, बहुत ही उम्दा कलाकार है यार। मतलब एक वो कहते हैं कंस मामा टाइप, वैसा सीन इन्होंने बताया। बट क्या मतलब, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड आई एक्चुअली मैंने बस कल ही मैंने देखी है। अमरीश वर्मा है, जिमी मेहता इनके नाम से है, अमरीश वर्मा, इन्होंने ये एक्टिंग करी है और खुद डायरेक्ट भी किया, खुद ने लिखा भी है। और साथ में परमवीर चीमा, ये जो है प्रशांत नरूला का रोल निभा रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो हर एक चीज़ इसमें दिखाई है जो कि एक स्ट्रगलर एक्टर क्या फेस करता है इन यू नो मुंबई या जहाँ पे भी उसको एक्टिंग का वो करना है। पहले थिएटर आर्टिस्ट होता है, अपना स्ट्रगल जो है पर्सनल लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है, वो सारी चीज़ों को मिक्स करके क्या चीज़ बनाई है यार। ऑनेस्टली मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अभी जो वीकेंड है आप बेंच वॉच करिए, दोनों सीजन ख़त्म करिए और इतना बढ़िया है। एंड ऑनेस्टली आई कांट वेट, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी सरप्राइज आफ्टर वॉचिंग द फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन 2। जी हाँ, वैसे बता सकते हैं मुझे आप अगर आपने देखी है तो। बट विजयंत कोहली, इन्होंने भी क्या एक्टिंग की है यार, कुकरेजा, एक से बढ़कर एक ऑनेस्टली।

0: केतन,
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: वेलकम बैक. चलिए बॉलीवुड की खबर लेके आए हैं. बॉलीवुड में एक्चुअली दो चीजें रिलीज हुई हैं जो मतलब मजेदार थी यार. पहली लिंक तो ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी के रिव्यू के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि ये फिल्म मल्टीवर्स के बजाय इमोशंस, ह्यूमर और ह्यूरिज्म पर ज्यादा फोकस करती है. और टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस के साथ साथ पीटर पार्कर का एक दिलचस्प और ग्राउंडेड कहानी पेश की है. वाओ, कितने लोगों ने देखी ये फिल्म? कल फर्स्ट डे वाला शो मुझे 5599 में बताइए. फीडबैक लेना चाहता हूं मैं. एक्चुअली यहां पे ब्लूपर्स नहीं चाहिए. यहां पे ये नहीं तोड़ना है कि भाई क्या है क्या नहीं है. बट एक और चीज रिलीज हुई यार, एक और. डू यू नो, रिलीज तो क्या कल लॉन्च हुई थी, ट्रेलर लॉन्च हुआ था और मुझे बहुत बढ़िया लगा. गूज़बम्प था ऑनेस्टली. वैसे यस, नीतीश तिवारी की ग्रैंड 3D फिल्म रामायणा के ट्रेलर जो है उसे रिलीज किया गया है, जिसमें सनी देओल जो एक्चुअली ट्रेलर में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए हैं, भले ही ट्रेलर में नजर नहीं आए हो, लेकिन यश ने रावणा के रूप में अपने फिरोशियस अवतार से सभी को हैरान कर दिया. एक चीज मुझे लगी, ऑनेस्टली ऑनेस्ट फीडबैक बताऊंगा, ऑनेस्ट फीडबैक जो मुझे लगा, मतलब नो डाउट द एक्टिंग एवरीथिंग वॉज सो ग्रेट, बस डायलॉग जो भारीपन था जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं रावण के केस में, बहुत ही ठंडा लगा मुझे. मतलब मुझे ये मेरा पर्सनल है, जो फिल्म उन्होंने ट्रेलर जो दिखाया उसमें यश की जो आवाज़ है, हो सकता है डब्ड हो, ये उनकी लग नहीं रही, बट बहुत हल्की लग रही थी. इट वॉज साउंडिंग वेरी यू नो नॉट रिफ्लेक्टिंग हु इज ही. सो यस, रणबीर कपूर जिसमें राम बने हैं, सीता साई पल्लवी हैं, सीता माता का रोल जो है वो साई पल्लवी कर रही हैं, एआर रहमान का म्यूजिक है, हंस जिमर का म्यूजिक है, शेंडर 3D विजुअल्स भी इसमें डाले हैं. बट यस, अगर आप ट्रेलर देखना चाहते हैं यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं. बट अगर देख लिया है तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, और अगर मूवी भी देख ली है स्पाइडरमैन तो आपको कैसी लगी. 5599 नंबर.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है, 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर है, 50% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा 5:36 पीएम पे। ओवरऑल दिन ऐसा ही रहने वाला है। सो यस, प्री वर्कआउट बिफोर द वीकेंड।
0: बचाओ क्या,
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

रितेश देव और उनके लाइव बैंड के साथ डिवोशनल म्यूजिक फैशन फ्यूजन भजन और कीर्तन की एक शानदार शाम भजन जैम्स लाइव उसका जो है एक शो होने जा रहा है। बहुत ही स्पेशल कॉन्सर्ट है जो कि सैटरडे 22nd ऑफ अगस्त को होने वाला है रात के 7 बजे के बाद वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में, और उसमें ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड द्वारा प्रेजेंटेड और न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा क्यूरेटेड ये इवेंट गिफ्ट ऑफ द लाइफ फिजी की मदद से एक नया चैरिटी कॉन्सर्ट है। इवेंट्स की टिकट्स जो है वो सिर्फ $30 है। 5 साल से छोटे बच्चे के लिए कंप्लीटली फ्री एंट्री है और वेन्यू पर स्नैक्स और

0: कावा भी बेचा जाएगा। टिकट्स आप eventbrite.co.nz पे जाके ले सकते हैं या फिर जेएस फ्रेश पापटोटे, वेली फ्रेश पापटोटे और शिव प्रसाद केल्स्टन से ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।

0: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
1: SIT Online. Learn without limits.
2: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
3: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 800-4-NZ-PMI.
4: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
5: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
4: स्किप या रीप्ले.
6: Let's go. 2026 Commonwealth Games के Day 7 में action और excitement दोनों full on देखने को मिला है. सबसे पहले athletes में Australia ने अपना domination continue रखा है. Women's 5000 meter में Australia ने gold और silver दोनों जीतकर काफी उम्दा performance दी है. Weightlifting में England के Emily Campbell ने फिर से history create करी है और उन्होंने Women's 86th kilogram plus category में Commonwealth Games रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. ट्रैक साइकिलिंग में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जलवा रहा. इंग्लैंड ने मेंस टीम परस्यूट जीता जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स टीम परस्यूट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वेल्स ने वुमेन्स टीम स्पिरिट और गेम्स रिकॉर्ड के साथ अपना गोल्ड जीता. नेटबॉल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार कमबैक करते हुए 58-54 से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली है. इंडिया के लिए भी दिन यादगार रहा. पैरा एथलेट्स में दिलीप गेविट ने गोल्ड मेडल जीता है. मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर हासिल किया और वेट लिफ्टिंग में सीमा कलीरमना ने ब्रॉन्ज जीतकर इंडिया के मेडल टैली को और भी स्ट्रांग बना लिया है. सो यस, इट इज गोइंग सो अमेजिंग. अभी रिकॉर्ड भी देख लेते हैं बिकॉज न्यूजीलैंड के भी मेडल्स में काफी इजाफा हुआ है. लेट मी क्विकली सी कौन कितना कमाल कर पाया है. रैंकिंग देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल. रैंकिंग इज गोइंग सो ग्रेट राइट नाउ. ऑस्ट्रेलिया इज ऑन टॉप. जी हाँ, 51 गोल्ड हो चुके हैं उनके इन टोटल. 110 मेडल्स ले चुकी है. इंग्लैंड अभी दूसरे नंबर पे है 15 गोल्ड के साथ. यू जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. ऑस्ट्रेलिया के 51 गोल्ड है और इंग्लैंड के 15. फर्स्ट और सेकंड में देखिए कितना फर्क है. ऑलमोस्ट डबल मेडल्स नंबर में हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के पास कंपेयर टू इंग्लैंड. कैनेडा थर्ड नंबर पर है. स्कॉटलैंड फोर्थ नंबर पे. नाइजीरिया फिफ्थ. साउथ अफ्रीका सिक्स्थ. मलेशिया सेवन. न्यूजीलैंड कल गोल्ड मेडल जीत के और कुछ मेडल जीत के ऑफकोर्स 8th नंबर पे आ चुकी है. पहले 9th नंबर पे थी तो विच हैज़ बीन सो ग्रेट फॉर देम फॉर अस. ऑफकोर्स इंडिया 9वें नंबर पे थी, फिसल के नीचे आ चुकी है. जमैका ने ऊपर आ चुकी है. 3 गोल्ड हो चुके हैं वैसे इंडिया के बट स्टिल 10वें नंबर पे है. उसके बाद वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और जर्सी, समोआ, ये सब है. फिजी 16th नंबर पे है. 1 गोल्ड जीत चुकी है अभी तक, यानी इन टोटल 1 ही कप उनको मिला है. सो यस, फिजी इज ऑन 16. श्रीलंका 23rd नंबर पर है और रवांडा अभी हाल फिलहाल 27th नंबर पर, यानी कि इसके अलावा किसने भी एक भी मेडल नहीं जीता. इसलिए टॉप 27 में ये थी लिस्ट.
7: लंच बॉक्स विद केतन.
8: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए बात करते हैं अभी पॉडकास्ट की। रो ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे, अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, व्हाटएवर फोन यू आर यूजिंग, और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। काफी कुछ कंटेंट हम वहां पे लेके आते हैं। अभी एक हमारा लेटेस्ट न्यूज़लेटर भी रिलीज हुआ है, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको वैसे तो मिलेगा नहीं, बट अमेजिंग कि मेरा गाना 100K क्रॉस हो चुका है एंड पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जो मीडिया वर्क्स है रोवा, वहाँ पे उन्होंने फीचर भी किया है रिगार्डिंग दैट कंटेंट। सो थैंक यू सो मच अगेन। आप मेरे गाने को सुन सकते हैं, आप जस्ट यूट्यूब पे जाइए और सफायर केतन के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मुझे अगर ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन बायो मिल जाएगी। पर यस, सुनील लाल वो यहां पे आए थे, उन्होंने बात की है रिगार्डिंग LGBTQ+, उसके राइट्स, उसके हकदार हक के बारे में, और क्या भेदभाव उन्हें फेस करना पड़ता है उसके बारे में बात की है, रिप्रेजेंटेशंस, और लोग उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, जब बुलाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। सो यस, आप ये चीज़ सुन सकते हैं। आप मुझे 5599 भेज दीजिए ताकि लिंक जो है, ऑडियो लिंक जो है वो आप तक पहुँच जाए। साथ में ऑफकोर्स अगर आप ब्रेकफास्ट शो से विजय पूजा का कुछ बिट्स एंड कन्वर्जेशन सुनना चाहते हैं तो हमें BF इनिशियल है ब्रेकफास्ट शो का, BF लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए ताकि वो लिंक भी आप तक पहुंच जाए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप बने रहिए, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ दैट अभी स्पोर्ट्स आप क्या देख सकते हैं, एंड प्लस ऑफ कोर्स आप वीकेंड के टाइम भी क्या देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक वेब सीरीज है, उसे आप जरूर देखिए अगर आपने देखी है। तो नहीं देखी है तो डोंट वरी, हटी नहीं है, अभी भी है वहाँ पे, आई थिंक प्राइम वीडियोस पे है ये, तो आप जाके देख सकते हैं सपने वर्सेस एवरीवन। वेल यस, स्पोर्ट्स में अगर देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 अगस्त तक ये चलने वाला है, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। आज ऐसा आखिरी दिन है ऑफ दिस मंथ, ये 7वां महीना भी हो चुका है खत्म। वेल यस, कॉमनवेल्थ गेम्स 2 को हाँ ग्लासगो में हो रहा है, स्कॉटलैंड में हो रहा है, एंड उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन गेम्स भी हो रहे हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे। तो आप डोमिनियन रिपब्लिक में जाके अगर इफ़ यू आर गोइंग ओवर देयर आप देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो देखी जाएगा। साथ में आप मुबाडला सिटी DC ओपन ये देख सकते हैं, USA में ये हो रहा है, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अफ्रीकन वुमेन कप ऑफ नेशन फुटबॉल वुमेन ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं, 16 अगस्त तक ये होने वाला है मोरक्को में। AIG वुमेन्स ओपन गोल्फ वुमेन ये भी हो रहा है, 2 अगस्त तक ये चलने वाला है, कल परसों शुरू हो चुका था, UK में हो रहा है। एंड साथ में रैली फिनलैंड ये भी 2 तारीख तक होगा, तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं ये वाले स्पोर्ट्स। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी काफ़ी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं, कुछ कुछ अपडेट्स तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए भी थे कि ये मैचेस जो हैं आप देख सकते हैं। बट यस, आज के दिन 31 जुलाई मेन फिक्स्चर में नीदरलैंड वर्सेस नामीबिया के बीच में मैच हो रहा है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप League 2 हो रहा है, जो 2027 जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2027 वाला, उसके लिए हो रहा है ये। और उसके बाद केन्या वर्सेस बैरन भी मैच होने वाला है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। वुमेन क्रिकेट में अगर देखें तो आज पाकिस्तान वुमेन टूर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है, इसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट T20 इंटरनेशनल दम्बुला में हो रहा है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in and store only. T's and C's apply.
3: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jaiku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jaiku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jaiku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट K 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it, and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turaki, All Together Auckland.
3: Branchy Group 3 Event New Zealand અને Aroha Autos સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ. તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
9: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
12: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
13: Now I'm here.
12: Back here now.
13: Here I am.
12: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले एक काफी सवाल आता है दैट आईआरडी में अनक्लेम चीजें हैं या फिर क्लेम चीजें हैं, उनके बारे में पता कैसे करें वेबसाइट पे जाके. वेल, न्यूजीलैंड के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट आईआरडी के पास करोड़ ऑफ डॉलर्स की अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है. ये पैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं जो 5 साल तक ओनर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, तो वो आईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है. चेक करना बहुत ईजी है. बस आईडी की अनक्लेम मनी सर्च पेज पर जाकर आप अपना नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करें. अगर आपके नाम पर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो माई आई आर अकाउंट से लॉग इन करके क्लेम आप सबमिट कर सकते हैं. क्लेम करते वक्त आपको अपनी आइडेंटिटी और उस पैसे से कनेक्शन के प्रूफ देने होंगे, जैसे पुराने एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट जो दिखाए कि पैसे आपका ही है. आईडी क्लेम्स प्रोसेस करने में कम से कम 12 हफ्ते लग सकते हैं. अगर क्लेम सक्सेसफुल होता है तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये टैक्स रिफंड नहीं है. ये सिर्फ वो पैसा है जो किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच पाया और बाद में आईआरडी के पास पहुंच गया. स्कैम कॉल्स या मैसेजेस से भी हैकर्स आप बच के रहे जो अनक्लेम मनी के नाम पर पर्सनल डिटेल्स मांगते रहते हैं. अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं या पहले रह चुके हैं तो एक बार आप अपना नाम जो है जरूर चेक करें. हो सकता है आपके लिए भी कोई सरप्राइज वेट कर रहा हो आईआरडी के थ्रू. डू यू थिंक सो?
0: दिल से

0: वेलकम बैक। चलिए अभी मेरा जाने का टाइम आ चुका है टू एंजॉय द वीकेंड। आप ही एंजॉय करिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। ऑफ कोर्स आई नो दैट आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो ये है रिगार्डिंग 25th of August स्पार्क एरिना में ये शो होने जा रहा है, जहां पे करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं ऑकलैंड में। ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला आ रहे हैं पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके स्पार्क एरिना में 25 अगस्त को अपने गेस्ट अपीयरेंस गेस्ट स्पेशल गेस्ट इक्की को लेकर। जी हां, वो भी वहां पे परफॉर्म करेंगे, यानी कि एक टिकट दो धमाल दो सुपरस्टार। वेल यस, बहुत ही बढ़िया नाइट होने वाली है, एक परफेक्ट एंजॉय करने के लिए। hum.rua.nz इज द वेबसाइट जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर livenation.co.nz पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मेरा सवाल यहां पे ये है, जिसके थ्रू आप जीत सकते हैं डबल पास, वो ये है कि आप मुझे KA लिख के, राइट आंसर लिख के मुझे 5599 पे भेज देना। KA बोले तो करण औजला का इनिशियल है, और सवाल ये है कि करण औजला का इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है, जो हैंडल है इंस्टाग्राम हैंडल उसमें नाम क्या है करण औजला का। आप मुझे फटाफट से 5599 पे भेज दीजिए, जो है लिखा हुआ है वही लिख के भेजना, कुछ एक्स्ट्रा अपने हिसाब से मत डालना। एंड मेक श्योर दैट स्पेस ना हो बीच में, बिकॉज ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के जो हैंडल होते हैं वो स्पेस के साथ नहीं, जैसे मेरा है, मेरा नाम केतन कुमार होता है, स्पेस आता है, लेकिन इंस्टा हैंडल इज द सिंगर साहेब। सो यस, आप मुझे 5599 पे KA लिखिए और राइट आंसर यानी कि करण औजला का इंस्टाग्राम हैंडल का नाम लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए। बट आई विल सी यू ऑन मंडे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
7: Hi, Kevinita here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
8: TradeStaff, industrial employment solutions. TradeStaff.
9: Jen didn't think she needed a DVS system.
10: Oh, I've got insulation in that.
9: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
10: Ah, yeah.
9: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
12: Ready for a new look inside? Start with the Rosen Test Pot, then bring your room to life. 50% off test pots, 20% off interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Rosen, the paint the professionals use. T's and C's apply.
2: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A new report puts a hefty price tag on the country's energy spend through to 2050. The findings are from the modelling done by the Business New Zealand Energy Council and the government's Energy Promotion Agency. The Energy Council's Ben Young says the figure includes everyday household costs.
14: We're looking at roughly $1.3 trillion, or around 11% of annual GDP. This is us spending on anything to do with the energy sector. So every time we fill our car up at the pump or pay our electricity bill.
13: A potentially major step in the Gaza conflict, US President Trump announced that an agreement has been reached for the complete disarming of Hamas and other groups. A senior Hamas official has also confirmed this to the BBC. There has been a bounce back in business confidence. The latest ANZ Outlook survey shows it jumped another 19 points in July and is described as being at historically solid levels. A government program to upgrade small and remote schools is at another milestone. It's completed its 800th upgrade. Minister Erica Stanford says she's being told by principals that the work is making a significant difference to school environments. To sport, New Zealand will start the new day at the Commonwealth Games this evening, sitting in eighth place on the medal table. Certainly, the expectation is high for more cycling medals tomorrow morning, plus there's the women's pole vault. And to rugby with shift four, unwanted All Blacks halfback Noah Hotham has plenty to play for this evening in Tasman's opening NPC game against North Harbour at Nelson's Trafalgar Park. He's been told what he needs to work on.
0: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: मौसम के हालचाल, वैसे मेट सर्विस के अनुसार आज का टेम्परेचर बाहर का तो थोड़ा क्लाउडी जरूर है, लेकिन मोस्टली फाइन वेदर. आज ओवरनाइट 6 degrees टेम्परेचर रहने वाला है.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee break with Sandy.
15: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी एंड कैसे हो केतन? कैसा जा रहा है तुम्हारा डे?
16: मेरा बढ़िया जा रहा है, आप कैसे हो?
15: एकदम बढ़िया है। तुम्हारी वीडियो कैसे जा रही है?
16: वीडियो अच्छी चल रही है, लेकिन वही यार मेरे को अभी थोड़ा हो रहा है कि यार अभी सपोर्ट मिला कम हो गया है, पता नहीं कि एकदम व्यूज रुक गए यार।
15: मतलब सबने देख लिया, इसका मतलब क्या?
16: नहीं नहीं, 8 बिलियन लोग है, इतने तो व्यूज ही नहीं मेरे कहां सबने देखा है।
15: तो अभी तक अगर आपने केतन की वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप जरूर देखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सैफायर 2.0। तो ये गाने की वीडियो, ये गाना भी बनाया केतन ने, मिस आउट किया तो अभी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इस गाने की वीडियो जाके ज़रूर चेक करो, बिकॉज लिरिक्स तो गाने में न्यूजीलैंड के बारे में है ही, वीडियो भी इज टोटल अबाउट न्यूजीलैंड, राइट?
16: यस यस, टोटली टोटली।
15: Yeah, so,
16: अभी लोग क्या है वो दूसरे वीडियो में ज्यादा बिजी हो गए, क्योंकि उनको क्या कि अभी हफ्ते दो हफ्ते में कुछ ज्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिला ना, व्यूज अच्छे मिल गए।
15: हाँ,
16: तो अभी उसी में लगे हुए लोग।
15: कौन से वाले में?
16: मतलब जो जो भी हुआ है इंडिया में हुआ है, जो वर्ल्ड में हो रहा है अलग अलग जगह।
15: यार अभी देखा नहीं रुजबे की रील देखी तुमने? वो एक नया प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं रुजबे, यहाँ पे न्यूजीलैंड में कुछ हुआ है जिसके बारे में
16: सोच रहा हूँ। प्रोटेस्ट में जाके ना सफायर गाना चलाऊंगा अपना वाला।
15: ये देखो
16: न्यूजीलैंड के बारे में
15: लोग ऐसे ही लोग थे
16: यार, हम न्यूजीलैंड के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किस लिए करना चाहता है कि न्यूजीलैंड में वो चीज ना हो? तो मैं भी तो न्यूजीलैंड को ही प्रमोट कर रहा हूँ ना, मैं इंडिया वाला सफायर नहीं चला रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड वाला सफायर चला रहा
15: हूँ। एनीवे, सो अगर आपने सफायर अभी तक नहीं सुना है, हियर यू गो।

0: Media. Streaming on Rover.
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
3: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre Sale Event today till Sunday.
4: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
3: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious, high protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
1: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना. एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Coffee break with Sandy.
11: 3:16 हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. IRD का कहना है कि करंटली उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है अनक्लेम्ड मनी जो किसी को बिलोंग करती है. ये इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस न्यूजीलैंड. सो दिस कैन हैपन. जो राइटफुल जो ओनर होता है जब उन्हें काफ़ी साल तक कंटैक्ट नहीं हो पाता है तो उनकी मनी जो है अनक्लेम रहती है. सो सम कॉमन सोर्सेज है जैसे कि फॉरगॉटन बैंक अकाउंट हो सकते हैं. भाई ऐसा कौन है जिसको अपना बैंक अकाउंट ही याद नहीं है. अनक्लेम्ड वेजेस या एम्प्लॉई बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स हो सकते हैं या शेयर्स हो सकते हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं, रिफंड्स या बाकी पेमेंट्स जहाँ पे जो ओनर है वो मिल नहीं रहा है. सो अगर आपको चेक करना है जस्ट इन केस, अगर आपकी भी इस मिलियन डॉलर्स की अनक्लेम्ड मनी में अगर आपका भी हिस्सा है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो IRD की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं. सो IRD की वेबसाइट पे वहीं पे IRD अनक्लेम्ड मनी सर्च है. सो उनका एक मनी सर्च पेज है. सर्च योर नेम और फैमिली मेम्बर्स नेम या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च कीजिए. सो इफ देर इज़ अ मैच जस्ट लॉग इन टू योर माई IR एंड देन सबमिट अ क्लेम विद एविडेंस कि ये जो मनी है ये आपको बिलोंग करती है. सो रिमेंबर, अगर आपको ईमेल आती है कि आपके इतनी मनी जो है ये आपके लिए है तो इसके लिए आप अकाउंट डिटेल्स भेजो, तो वहाँ पे डोंट फॉल फॉर इट. जो IRD की मनी होती है वो कभी भी आपको ईमेल में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. वो ईमेल में सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि आपके लिए एक नया मैसेज है, अपना IRD अकाउंट में लॉगिन कीजिए, माई IR में जाके लॉगिन कीजिए और सिर्फ वहीं पे जाके जो मैसेज है ये आप पढ़ सकते हैं. किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, फ़ोन पे, मैसेज पे, ईमेल पे IRD का फुल मैसेज कि ये है या ये नहीं है कभी भी नहीं आता है. सो मेक श्योर कि यू आर अवेयर अबाउट दिस बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं. लेकिन आपका अगर अनक्लेम्ड मनी है तो अनक्लेम्ड मनी सर्च में जाइएगा IRD पे एंड जस्ट राइट IRD अनक्लेम्ड मनी सर्च एंड देन जस्ट सर्च योर नेम या फैमिली मेम्बर या ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड देन अगर है आपका भी हिस्सा इस अनक्लेम्ड मनी में तो आप भी इसको अभी से क्लेम कर सकते हैं.
8: Bollywood's most wanted.
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
12: मैं लाऊं अपना A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams. Yeah.

3:21 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड आपको बता दें कि इसी वीकेंड पे शो होने वाला है गरबा नाइट विथ राज गढ़वी. राज गढ़वी तो यहाँ पे सुपर सिटी में पहुँच ही चुके हैं. एंड कॉफ़ी ब्रेक में वैसे केतन की बात हुई थी स्वप्निल शाह के साथ रिगार्डिंग द इवेंट, एंड उन्हें वो एयरपोर्ट से पिक करके आ रहे थे. सो आज 5 बजे के बाद वैसे राज गढ़वी यहाँ पे भी आने वाले हैं, स्टूडियो में आने वाले हैं. कुछ बातें हमारे साथ भी वो शेयर करने वाले हैं इस इवेंट के बारे में. एंड अगर आपको कोई सवाल है तो आप भी यहाँ पे सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं. 5599 इज़ द नंबर. सो वाइब्रेंट एनर्जी ऑफ गरबा आज एक्चुअली में आप उनसे सुनेंगे कि कैसी एनर्जी वहाँ पे कल रहने वाली है. कल ये इवेंट होने वाला है महात्मा गांधी सेंटर में, एंड इट्स गोना बी वेरी नाइस एंड ऑसम इवेंट गाइस. सो अपने कपड़े वगैरह तैयार रखिएगा जो आपको पहन के जाने हैं वहाँ पे. eventstickets.co.nz पे जाके अपनी टिकट्स खरीद लीजिए अगर अभी तक आपने टिकट नहीं खरीदी है. सो अपने से बात कीजिए 0224394736 पर. सो नंबर टू कॉल इज 0224394736.

0: 331 एट द मोमेंट, 332 एट द मोमेंट, एक्चुअली मैं यहाँ पे हो चुके हैं. क्या आपको पता है ओरिजिनल गाना किसने गाया था? ये वाला गल बन गई. अगर आपको ओरिजिनल सिंगर का नाम पता है, बहुत पहले एक्चुअली में एल्बम में ये एक सिंगल सॉन्ग जो होते हैं बेसिकली, वैसा वो रिलीज हुआ था गाना. एंड उस समय पर दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो था, जो गाना गाते थे, ये बहुत पॉपुलर था. तो उन्होंने ये गाना गाया था गल बन गई. सो अगर आपको ओरिजिनल सिंगर का नाम पता है, जो कि ओजी गाना जो है ये किसने गाया है गल बन गई, लिख के भेजिए. देखते हैं कितने लोगों को ये गाने के बारे में पता है. और तब तक मैं खैर इस इन्फॉर्मेशन का आपके साथ शेयर करती हूँ. डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं. सो क्या हो रहा है कि ऑकलैंड जू में एक ट्रैक बनाया गया है जिसपे 20 रेप्लिकाज है डिफरेंट, 15 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डायनासोर के. सो ये आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्सपीरियंस है, डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक एक्सपीरियंस, ये ऑकलैंड जू में ले सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑन गोइंग ओनली, अभी वहाँ पे वो चल रहा है. एंड इट्स गोना बी देयर टिल 7th February एक्चुअली में. सो काफ़ी टाइम है आपके पास ये नया ट्रैक जो है ये जाके एक्सपीरियंस करने के लिए. सो बच्चों की और भी एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते हैं. तो वैसे एक ऑकलैंड जाइन फेस्ट मार्केट जो है ये भी लगने वाली है, और ये ऑकलैंड आर्ट गैलरी में लगने वाली है जो कि सिटी सेंटर में है. सो वो भी आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं. यू कैन अक्रॉस 2 days डिस्कवर जाइन्स प्रिंट्स, हैंडमेड पब्लिकेशंस. सो मोर देन 130 मेकर्स की वहाँ पर पब्लिकेशन रहेंगे, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. ताकापुना में विंटर लाइट्स भी रहने वाली है. सो टिल दिस संडे, सो आज है वहाँ पे, आज रात को, सैटरडे को एंड संडे को, 3 दिन. ऑफकोर्स वहाँ पे एंट्री एकदम फ्री है. सो ताकापुना हाउसमेयर ग्रीन में, जो कि सेंट्रल में एक्चुअली में पड़ता है NZ स्क्वेयर के पास, वहाँ पे आप जा सकते हैं. पिछले साल 2025 में जो फेस्टिवल हुआ था जिसमें 60,000 विजिटर्स गए थे अक्रॉस 4 nights, सो तक अपना विंटर लाइट्स जो है ये इस बार वापस आ चुके हैं 2026 में. फ्री फैमिली फ्रेंडली फेस्टिवल इवेंट ये रहता है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट आपको यू नो इमर्सिव लाइट आर्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे लाइव एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे रहेगा. सो इट्स गोना बी वेरी नाइस इवनिंग. सो अगर आप कुछ फन इवनिंग कहीं पे इंजॉय करना चाहते हैं, विंटर नाइट को कहीं पे निकलना चाहते हैं, लाइट्स को इंजॉय करते हुए साथ में खाना पीना है आपको, लाइव म्यूजिक का मज़ा लेना है, तो आई थिंक दिस गोना बी अ रियली परफेक्ट फॉर यू. ताकापुना विंटर लाइट्स अगर आप सर्च करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. यस, मैंने पूछा था कि ओरिजिनल गाना गल बन गई ये किसने गाया था, तो अभी भी लिख के भेज सकते हैं 5599 पर.
1: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन.
2: Big Save's massive stock liquidation sale ends Monday and everything must go. We're overloaded with stock. Our warehouses are full. Our stores are packed. So today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99. Queen beds from $8.99. Plus get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Everything must go. Must end Monday only at Big Save.
3: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Spending more time indoors this winter? Freshen up with the Resene Winter Sale. 50% off test pots, 20% off Resene interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Resene, the paint the professionals use. T's and C's apply.
5: Hi, Kevin Eater here, Tradestaff. Everyone knows that Tradestaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. Tradestaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
6: Tradestaff, industrial employment solution. फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: Mike here from Novus Glass. When this happens,
11: Novus,
10: just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
12: Show us your crack.
13: टाटा नैनो ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और SUVs ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से। लीप मोटर, डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स, ट्रेड-इन्स वेलकम, फाइनेंस भी अवेलेबल है। विजिट टाटा नैनो सुपरसाइट, पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुडबाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए। और हाँ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके मदर इन लॉ के अलावा। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो। फीस, सीज, डीज and credit criteria apply.

0: 22 मिनट बाकी है 4 बजने में एंड ये सुखबीर इज द राइट आंसर. नितिका, सपना, आसिफ एंड जो अपना नाम नहीं लिख पाए, जो ओरिजिनल सॉन्ग है ये एक्चुअली में गल बन गई, ये सुखबीर ने गाया एंड ओरिजिनल साउंड्स लाइक दिस.
1: कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल, बन गई बन गई, मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई.
0: तो जिस टाइम पे ये गाना आया था उस समय पर अभी तक ट्रेडिशनल फोक ही चलता था पंजाबी में, बट सुखबीर जो है ये एक पी पॉप कल्चर लेके आए थे इनटू द भंगड़ा ट्यून्स. तो उन्होंने पी पॉप कल्चर भंगड़ा ट्यून्स के साथ थोड़ा सा मिक्स किया एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक जो था ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विच वेंट रियली वेल. एक्चुअली में ये एल्बम इनकी प्लैटिनम गई थी, इतनी हिट एक्चुअली में उस समय पर ही इनकी एल्बम गई थी. एंड ऑल्सो ऑफकोर्स इनके और भी ढेर सारे गाने बाद में आपने काफ़ी सुने, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. मुझे लगता है सुखबीर एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन जितने भी गाए हैं बहुत अच्छे हिट गए हैं. इन्होंने अपने करियर में इतने ज़्यादा गाने वैसे नहीं गाए हैं. सो या मूविंग ऑन, वेल सुखबीर से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे वापस आते हैं. आपको बताना चाहती हूँ कि एक सुपर इवेंट आपके सुपर सिटी में होने वाला है जिसका नाम है भजन जैम्स. सो भजन जैम्स एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे भजन एंड कीर्तन्स का फ्यूजन होने वाला है. सो इफ़ यू आर अ वन जिसको भजन या कीर्तन्स बहुत पसंद है तो ये इवेंट आपके लिए है. रवितेश देओ और आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. एक इनक्रेडिबल लाइव बैंड इनका रहेगा जहाँ पे डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन, भजन्स एंड कीर्तन ये लेके आने वाले हैं. सो ट्रेडिशनल डिवोशन जो है उसको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, साथ होगा टैलेंटेड वोकलिस्ट का एंड अकम्पलिश्ड म्यूजिशियंस भी साथ में रहेंगे. दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ट्रैवलिंग लिमिटेड एंड एनजेड कल्चर ट्रस्ट. इस इवेंट को इन्होंने क्यूरेट किया है. स्पेशल इवेंट है विच इज़ बीइंग हेल्ड इन द एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी. 22 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है 7 PM ऑनवर्ड्स वैदिक सेंटर में, जो कि पापाटोई में लोकेटेड है. टिकट सिर्फ $30 की है. स्नैक्स एंड कावा साइट पे अवेलेबल रहेगा खरीदने के लिए एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है. सो टिकट्स आप ले सकते हैं eventbrite.com पे जाके, वहाँ पे अपने टिकट्स आप बुक करवा सकते हैं.

3:45 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड अनफिल्टर्ड का हमारा एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं सुना है जरूर जाके सुनेगा. ब्रेकिंग बैरियर्स शनील लाल के साथ हमने ये एपिसोड किया है जो कि शनील लाल जो है वैसे ये अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज अ ट्रांस एंड प्रोमिनेंट न्यूजीलैंड में ये जर्नलिस्ट है, पोलिटिकल कमेंटेटर भी है. LGBTQ कम्युनिटी को ये आगे जाके रिप्रजेंट भी करते हैं. इन्होंने यंग न्यूजीलैंडर ऑफ़ द ईयर अवार्ड जीता था 2023 में. ये अवार्ड इनको मिला था. बहुत सारी कैंपेन्स में ये हमेशा आगे रहते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें कन्वर्जन थेरेपी एक्शन ग्रुप इन्होंने बनाया था एंड 5 साल की मूवमेंट चलाई थी जहाँ पे बैन किया था कन्वर्जन थेरेपी को. सो कन्वर्जन थेरेपी इज़ बेसिकली जहाँ पे बोला जाता है कि टू LGBTQ कम्युनिटी की इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग राइट, आप सही नहीं हो, आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, तो आपको इस थेरेपी के थ्रू जाना पड़ेगा. ये पहले हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन बाद में इसे बैन कर दिया गया. सो इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है एंड ऑल्सो इस एपिसोड में आपको और बहुत कुछ पता चलेगा. मिथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इवन फॉर ट्रांसजेंडर्स हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, वो इन्होंने मिथ इस एपिसोड में क्लियर किए हैं. और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने बातें की है, मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे बातें की है, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स क्या होते हैं इसके बारे में इन्होंने हमें बताया है, बहुत सारी चीज़ें एंड पीपल लाइक यू एंड मी कैसे हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी की, जहाँ पे ना कुछ करके भी बहुत अच्छे वे से हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी इन्होंने इस एपिसोड में बताया है. फुल एपिसोड सुनने के लिए आप ड्राइव लिख भेज सकते हैं 5599 पर, या फिर आप रोवा पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे, तो आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा. एंड स्पॉटिफाई पे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे अगर आप सर्च करते हैं वहाँ पर भी आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा, या एप्पल म्यूजिक पे, अमेजोन पे, इट्स एवरीवेयर. सो जस्ट गो एंड सर्च एंड ये एपिसोड जाके ज़रूर सुनिएगा.

0: accurate traffic.
1: Would you trade in your house?
2: Cloudy overnight, moderate westerlies for Auckland, a low of 6. On the northern, it's heavy in both directions around Oniwa Road, building on the northwestern from Waterview to Te Atatū. The southern is heavy, southbound from Grafton to Penrose Road and heading north from Princes Street to just past Green Lane. Southwestern is heavy in both directions between Puhinui Road and Mangere Bridge.
1: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
3: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on, with up to 40% off women's and men's clothing, women's lingerie and men's underwear. At least 30% off kids' clothing and super deals on beauty. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
4: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials. Take 20% off Jasper J. Emerge office furniture and save $80 on a Brother laser printer, now $299. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
5: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. A review into social media messages posted by the Public Service Commissioner ahead of strike action shows more careful handling was needed. It found there was a risk of the content not being seen as politically neutral. The messaging was published in the lead-up to the so-called mega strike in October. A man is before the courts in Christchurch over alleged historic sexual offending. The 63-year-old is accused of 4 counts of unlawful sexual connection with a male aged 12 to 16 and 3 of indecent assault. The inking of a Northern Expressway deal is being seen as a major step towards improving safety and resilience. A public-private partnership will deliver the Warkworth to Tehana section of road. Northland Regional Transport Committee Chair Joe Carr says it's great news.
7: We're so pleased. It's been a real bane for a long time. It was the most important section of State Highway 1 between Whangarei and Auckland.
6: Electricity flexibility and batteries could lower energy costs by up to $21 billion through to 2050. That's according to a report from the government's energy agency EECA and the Business New Zealand Energy Council. EECA advisor Gareth Gretton says they've used comprehensive modelling.
8: That is trying to represent all of the costs across the entire energy system.
6: To sport, high hopes that the New Zealand gold medal count will lift in the coming day at the Commonwealth Games. There will be big chances in the cycling overnight, and there's also the women's pole vault tomorrow morning. And to rugby, with shift 4, the opening weekend of the NPC continues at 7:10 this evening at Trafalgar Park in Nelson, Tasman hosting North Harbour. A big night for halfback Noah Hotham, who was not wanted by the All Blacks on the big trip to South Africa.
5: Sports News, brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: वेदर का हाल आज काफ़ी मूडी रहा वेदर भी कभी धूप कभी छाव कभी बारिश कभी क्या ही क्या बट एनीवे अभी के लिए तो मस्त लग रहा है बाहर वेदर फील्स लाइक 14 एंड ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 7 डिग्रीज टुनाइट कल का दिन मिला जुला सा रहेगा और संडे बहुत ही बढ़िया
5: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusby.
11: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार
9: It is Friday, Drive Show में आपका स्वागत है 4:03 on the 31st of July. Hi Sandy,
12: Good afternoon, Rusbe, कैसे हो तुम?
9: मैं तो अभी के लिए तो ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं शो के एंड तक मेरी हालत क्या होने वाली है.
12: Yes guys, because मेरे को ऐसा कोल्ड हो गया है, तो इसलिए Rusbe is bit concerned.
9: Yes, I'm very concerned and very stressed also, क्योंकि मुझे वार्निंग मिली थी मेरे घर से.
12: Yeah,
9: भाई तू अगर फिर से बीमार होके आया ना तो भारी सोना अभी वही लग रहा है मुझे होने वाला है मेरा हाल
12: Anyway guys, लेकिन इससे बुरा हाल नहीं होने वाला है You know, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम इंटरव्यू में गए हो फुल प्रपू के बट वहां पे उल्टा ही कुछ हुआ है सो व्हाट हैपेंड दिस गाय ये कैंडिडेट जाता है इसका रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है साहब तो कैंडिडेट ये जाता है इंटरव्यू के लिए एंड टेक्निकल इंटरव्यू थी वो कुछ टेक्निकल जॉब की सो वहाँ पे उसको गर्मी लग रही है, ये इंडिया की इंटरव्यू है ठीक है, उसको गर्मी लग रही है, उसने बोला कि यार एसी थोड़ा ऑन हो सकता है, तो उसने ऐसा जो इंटरव्यूज ले रहे थे उनको बोला, कहते हैं श्योर, तो उसने फंक्शनिंग ऑफ एसी पूछना शुरू कर दिया जो इंटरव्यू में बैठे थे, कहता एसी बंद कर दो फैन चला दो, कहता वो हो सकता है फैन की फंक्शनिंग से, बोला फैन कैसे फंक्शन करता है, कहता वो भी बंद कर दो ये तो जो मैं कह रहा हूँ मेरे को वही सवाल पूछ रहे, तो मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा उनकी जो मिजरी थी पर्सन की।
0: सर थोड़ा एसी थोड़ा तेज हो जाता तो सही रहता सर।
13: हाँ कर लो एसी तेज कर लो
0: सर। चलो
13: हाँ तो बेटा रिमोट को उधर साइड में छोड़ो, और ये बताओ कि एसी कौन से सिद्धांत पे काम करता है।
0: सर जूल थॉमसन पर सिद्धांत पे काम करता है।
13: जूल थॉमसन सिद्धांत है ये कौन से वर्ष लाया गया, और उससे पहले भी कोई सिद्धांत था क्या इस टाइप का।
0: सर एसी बंद कर दो आप।
13: एसी बंद कर दे
0: जी सर।
13: तो गर्मी नहीं लगेगी, फैन में
0: पंखा चला देना सर।
13: तो पंखे में आप ये बताइए कि भारतीय पंखे में 3 ताड़ियां होती है जबकि अमेरिका के पंखे में 4 ताड़ियां होती है, ऐसा क्यों।
0: पंखा भी बंद कर दो सर।
9: अच्छा
12: ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो कहीं पे और ऐसा हाल हो गया, बोला कि यार ये भी बंद ही कर दो, रहने ही दो तुम
9: मेरे को ऑनेस्टली मैं अगर कभी इंटरव्यू में गया हूँ तो मैं कभी ऐसी डिमांड तो रखी नहीं मैंने कि एसी ऑन करो या ये कर दो या पंखा मेरी तरफ हिलाओ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। मैं गया हूँ भले मेरे को पसीना अगर आ रहा हो कुछ भी हो, मैं चुपचाप।
12: मुझे लगता है जो जिसने ये रील देखी उसके बाद तो कोई भी नहीं डिमांड करने वाला,
9: बट कौन डिमांड करता है यार, मेरे को नहीं मालूम। इंटरव्यू में एक्चुअली मालूम है, यहाँ पे काफी बार जाते हो तो पानी हमेशा ऑफर करते हैं।
12: yes.
9: मैं तभी भी नहीं बोलता हूँ कि नहीं नहीं पीना है मुझे पानी, मैं पी के आया हूँ। तो पानी मतलब, और यहाँ पे तो बहुत कर्टियस है।
12: मैं तो हमें क्या कॉफी पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो
9: हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ऐसे सारी चीजें नहीं पूछते। हमको बोलते हैं कि भाई
12: एक्चुअली में कॉफी या कुछ और चाहिए या समथिंग।
9: अगर हमने इंटरव्यू में अगर ऐसा बोल दिया कि भाई इसके मेरे को कॉफी पिलाओ या पानी पिलाओ, तो वो बोलेंगे कि अरे इसके अभी से डिमांड बढ़ गए, इसको हायर करेंगे तो और कितने डिमांड करेगा। ऐसा
12: कंफर्ट में नहीं रहने का वहाँ पे।
9: तो आपने कभी पूछा है ऐसा इंटरव्यू में, आपने कभी जाके पूछा है ऐसा?
12: या फिर आपकी ऐसे कौन सी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, फनीएस्ट इंटरव्यू आपकी कोई हुई है उसके बारे में भी आज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वन ऑफ योर इंटरव्यूज, या फिर जब आप यहाँ पे नए आए थे न्यूजीलैंड में। एंड कई बार क्या होता है कि यहाँ के अकॉर्डिंग कुछ जो इंटरव्यूज है कई बार सिस्टम नहीं पता होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वहाँ पे कभी गूफ अप हुआ है, तो कैन शेयर दैट एज वेल।
9: हाँ बताइए आपका इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस। 0800-004-866 इज द नंबर, यहाँ पे कॉल कीजिए और आप शेयर कीजिए, अभी भी आप कॉल कर सकते हो, अभी इज द गुड टाइम टू कॉल। 0800-004-866
12: इस नंबर पे कॉल करो अगर आपकी कोई फनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपने किसी को इंटरव्यू किया है
9: और वो बहुत फनी निकले
12: तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं

0: कनेक्ट कर दिया था, मैं सुना भी नहीं था लेकिन उसने मेरे को बहुत ऐसा सुनाया था.
1: वाओ.
0: और तब मुझे रियलाइज हुआ था कि लोगों पे क्या बीतती है जब मैं बात करता हूँ. हाय, आपका स्वागत है.
2: हेलो हेलो संदीप.
1: हाय.
2: मेरा ना इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर हमारे ना कॉलेज में वाइवा वगैरह होते थे तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी आती थी. तो हमारे कॉलेज में क्या था, हमारे कॉलेज का ना जो मेन गेट था ना, क्लासरूम गेट, वो बहुत लंबा था. लाइक वो 12 फुट वाले गेट होते ना लंबे से, वो था. और जो एग्जामिनर था वो बस गेट के साइड में ही बैठता, मतलब ज्यादा स्पेस नहीं था, मतलब गेट से होगा. करीब
0: आप गेट बोल रहे हो कि डोर बोल रहे हो? डोर बोल रहे हो.
2: डोर
0: हाँ, ठीक है.
2: रूम का जो डोर था.
0: हुँ.
2: अब जो मैं जब गया तो मैंने गेट ओपन करने की ट्राई की, वो खुला नहीं, टाइम था मुझे पता नहीं. अब मैंने लात मार के खोला तो वो गेट गिर गया, जो एग्जामिनर था ना उसके ऊपर.
0: अरे क्या बात है.
1: वाह.
0: फिर कौन कौन हंसा?
2: वाइवा देने से पहले फेल हो गया था.
0: क्या नाम है आपका?
2: गौरव.
0: गौरव, गौरव, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन. तो फिर उसके बाद अगली बार फिर वापस से वाइवा देने पड़े?
2: नहीं नहीं, फिर वो आया नहीं, उसके बाद वो रिटायर हो गए.
0: अच्छा, वो रिटायर रिटायर रिटायर नहीं हुए, वो रिटायर हर्ट हुए. नहीं, थैंक यू गौरव, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन.
1: थैंक्स फॉर कॉलिंग गौरव.
0: आप भी बताइएगा यहाँ पे कि आपके साथ ऐसे कोई फनी इंसिडेंट हुआ है. तो आज फ्राइडे के दिन फनी वाली बातें करेंगे. मेरे को एक्चुअली मैं सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना था लेकिन सैंडी ने शुरू किया फन के साथ, तो मैं चलो फन के साथ आगे बढ़ते.
1: सीरियस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन नॉट अभी. आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट योर रील, राइट? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट आफ्टर अ व्हाइल.
0: आफ्टर अ व्हाइल.

0: At Bunnings, we can help you get those easy DIY jobs done.
1: DIY can be the smallest thing. It can be changing shower heads, changing out your drawer handles to something new, whether you're renting or you're on your own home.
0: If you need help with your DIY projects, you pop in and talk to our experienced team members.
2: Or you can jump online to our DIY advice hub.
3: There'll be a lot of videos and inspiration for your DIY projects. We can help you out no matter what your budget is. There is definitely a DIY project for everyone.
4: We're all here to help you. Bunnings makes DIY easy.
5: Disney Ushies are now playing at Woolworths. Treat your Disney Ushies like VIPs with the exclusive collector's case. It includes two exclusive glow-in-the-dark Ushies and a game board. Available now for $12. T's and C's apply while stocks last.
6: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
7: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
6: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
8: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू 7 साल की वारंटी के साथ एसयूवी हाइब्रिड्स फोर व्हील ड्राइव्स परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साल्ट रोड टाकानिनी ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साल्ट रोड टाकानिनी
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है अभी और एक मैसेज आया हमारे पास बहुत ही बढ़िया और लंबा मैसेज आया है. Hey, I went to the interview when I came here first time. I got two interviews in a day. क्या बात है यार सर मेरे को इंटरव्यू मिलने के लिए एक दो महीना लग गया रहेगा या 8-9 महीने शायद फॉर लेबरर्स जॉब वेन आई रीच एट होम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द फर्स्ट एम्प्लॉयर एंड ही सेड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे वी विल पे $25 पर आवर आफ्टर वन आवर गॉट अनदर कॉल फ्रॉम सेकेंड एम्प्लॉयर And he said same thing, but $25.50.
14: I got $25.50. Yeah.
13: $25.50. I got confused. Next day, I got call from first one, and I said I got another offer for $26. He said he'll match the offer on the phone at the same time. After some hour, got second call and asked for contract. I told him I got offer for $27.
14: He said I will match.
13: I'm very confused and hard to make decision. It takes. क्या है फिर उसके आगे?
14: उसके आगे नहीं अभी दिखाई दिया. तो हम ये सोच रहे हैं कि आपने decision लिया कि नहीं लिया और कहाँ गए? आपने लिखा है कि I'm very confused and hard to make decision. It takes. So, मतलब you're still confused क्या?
13: बस एक ही चीज़ आपको कहना चाह रहे हैं लालच बुरी बला है.
14: But क्यों ना negotiate करें ना? This is a negotiation.
13: बहुत अच्छी idea ये.
14: अगर कोई better offer कर रहा है तो क्यों नहीं?
13: नहीं best है. लेकिन how far can you stretch this?
14: Yes.
13: ये भी है ना?
14: ये भी है.
13: कि
14: 30 तक तो जाना बनता है यार. आप एक एक डॉलर बढ़ा रहे हो. आपने बोला कि उसने 26 कर दिया 27 कर दिया एक साथ लेके चलो ना थोड़ा ऊपर 30 बोलो सीधा.
13: आप ये समझो इनका ये पहला इंटरव्यू है. पहले दूसरे दो इंटरव्यूज है यार ये.
14: या मैन उसमें अगर आपको अच्छा ऐसा ऑफर मिल रहा है
13: तो अच्छी बात है यार.
14: गुड स्टार्ट. आई विल से
13: हम जब आए थे तब हमें $13 थे वो टाइम पे. $13
14: समथिंग
13: आपका $12 मैं आया था भी 13-25 ऐसा कुछ था.
14: या
13: एंड देन या और इतना नेगोशिएशन भी नहीं होता था वो टाइम पे यार
14: जो है है
13: एक ही जॉब मिलता था वैसे भी मुश्किल से सो इट्स गुड दैट यू
14: आर गेटिंग स्टार्ट
13: एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ आप सुनते रहिए हम और हमने एक एक्चुअली में शाउट आउट दिया था ऑन विच डे वाज दैट कृति सनन का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था
14: कृति सनन का बर्थडे हमने इसी हफ्ते एक्चुअली में सेलिब्रेट किया था एंड उनको हमने शाउट आउट दिया था एंड गेस व्हाट कृति सनन लाइक्ड इट कि हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया ट्रेंड मेकर्स में यूजली हम सेलिब्रिटीज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड शी लाइक्ड इट कि हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा
13: ये मैसेज सुनते हैं आपके लिए है ये मैसेज तो सुनिएगा
15: Hi, I'm Kriti Sanin. Thank you so much for celebrating my birthday on the Hum FM.
13: क्या बात है? Yeah. Very nice. देखा?
14: So cool.
13: मतलब हमारा जो दोस्त है
14: उस दिन actually मैं try हो रहा था direct बात करने के लिए लेकिन she was in London.
13: And she's on a cruise or something. So yeah. Anyway, we like to thank Ayush यार. Ayush के कारण ये हुआ है उनकी
14: yes.
13: cousin है ये.
14: Ayush from Benams.
13: From Benams. Yeah. Thank you so much yeah, for that shout out. अभी के लिए आपके लिए Bollywood's most wanted.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: NZ PMI. You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे इनका मैसेज फिर से आया सैंडी.
1: इन्होंने वो इंटरव्यू वाला जो था,
0: वो इंटरव्यू वाला है, तो इनके साथ ये सीन हुआ कि इनको पहले ही जब नए नए आए दो इंटरव्यूज आए और इन्होंने नेगोशिएट किया दोनों एम्प्लॉयर्स के साथ रेट को लेकर. और फिर हमने उनको पूछा कि भाई कौन सा फिर आपने लिया, एंड में क्या हुआ स्टोरी. तो इन्होंने अभी रिप्लाई किया है कि आई स्टार्ट विद द हाईएस्ट पेड, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई हैव टू लेफ्ट माय जॉब आफ्टर 8 months, एंड व्हेन आई एम रेडी टू स्टार्ट आफ्टर 1.5 months दे ऑलरेडी हायर्ड समवन एल्स एंड आई स्टार्टेड ऊबर ईट्स एंड अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप द फूड टू फर्स्ट एम्प्लॉयर. About job, I said what looking, but he said I can't help now. I said fair enough, bro. अच्छा ये इन्होंने बेसिकली जॉब चालू किया एक जगह पर, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह पर वो मिले उनको और फिर अभी वो Uber Eats कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच यार शेयर करने के लिए.
1: थैंक्स फॉर शेयरिंग दो. वैसे आज यहाँ पे थोड़ी देर में 5 बजे के बाद रुजबे स्पेशल गेस्ट पे आ जाएंगे, राज कड़वी, वो भी आने वाले हैं यहाँ पे.
0: अरे वाह, वो भी, उनको भी बीमार करोगे आप?
1: वेरी फनी. इतनी भी बीमार नहीं हूँ. गरबा नाइट बेसिकली कल होने वाली है, वो एंजॉय करने के लिए आप भी रेडी रहेगा, अपने कपड़े रेडी रखिएगा जो आप कल पहन के जाने हैं.
0: कपड़े निकाल के रखना.
1: मतलब वार्डरोब से निकाल के रखोगे ना आप कपड़े. एनीवे और इसी के साथ साथ वैसे करण औजला, इनके शो की टिकट जीतने के लिए आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे. के ए आज आपके लिए, क्योंकि फ्राइडे है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको हम दे रहे हैं. के ए स्पेस अपना नाम लिख के बस आपको भेजना है 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे करण औजला के शो के लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है. स्पा करीना में 25 अगस्त को इनका शो होने वाला है शाम को. टिकट्स अगर आपको खरीदनी है hum.rover.nz पे जाइए, स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन बाय द टिकट्स.
0: जी तो फटाफट आप इसके टिकट्स बाय कर लीजिए. और अभी के लिए इफ यू वांट पार्टिसिपेट, के ए स्पेस आपका नाम, के ए के बीच में स्पेस नहीं चाहिए.
1: हाँ, के ए इज वन वर्ड,
0: वन वर्ड. के ए का
1: या का, के ए इज जस्ट वन वर्ड, इट्स एब्रिविएशन दो बट वन वर्ड.
0: जी हाँ, एंड स्पेस आपका नाम ये लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर करण औजला हु इज गोइंग टू बी
1: परफॉर्मिंग. 5 बजे तक का समय आपके पास इसमें अपना एंट्रीज भेजने के लिए.
0: जी और सैंडी जो टॉपिक पे ऊपर बात करना था वो अभी करना है, आज करना है कि मतलब अभी
1: तुम ये करो बात, या इट्स ओके यू कैन, टाइम है तुम्हारे पास.
0: एक गाना प्ले करते उसके बाद बात करते इसके ऊपर.
1: श्योर, ओके.
0: पॉलिटिकल बातें होने वाली है थोड़ी देर में. 0800-004-866 अगर आपको भी इंटरेस्ट है पॉलिटिकल.
1: कहाँ की पॉलिटिकल बात होने वाली है?
0: यहाँ की, यहाँ की.
1: अरे यार वही मैं बोलने वाली थी, इसके लिए स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं ब्लिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स एंड इट्स टाइम फॉर अस टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स आई थिंक. और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था CJP एंड सोनम वांगचुक एंड बाकी सारे जेन जी स्टूडेंट्स मिलकर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर, काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, आंदोलनों के बाद, मार खाने के बाद फाइनली उनको मिला जो उनको चाहिए था, विच वॉज रेजिग्नेशन ऑफ
1: एजुकेशन
0: मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. एंड देन एवरीवन वाज हैप्पी. फिर काफ़ी रील्स मीम्स भी आए कि अभी नेक्स्ट नितिन गडकरी. बट उससे पहले मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग एल्स दैट वी नीड टू टैकल एंड दैट इज समथिंग इन न्यूजीलैंड.
1: या बैक टू न्यूजीलैंड आते हैं बिकॉज हमें तो यहाँ की चीज़ें फिलहाल अफेक्ट कर रही है जो यहाँ पे आसपास चल रहा है
0: जी, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करना चाहिए. एंड ये जो मुद्दा है जिसके ऊपर अभी काफ़ी बातें हो रही है, दिस इज़ अबाउट विंस्टन पीटर्स जो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी इसको इनको कहा जाता है. एंड ऑन वेनसडे 29 जुलाई पार्लियामेंट में एक इंसिडेंट हुआ, एक डिबेट हो रहा था और उसमें पीटर्स को हेकल किया गया था अबाउट हिज वैक्सीनेशन स्टेटस बाय ग्रीन पार्टी के एमपी लॉरेंस जुनैन, जो जिनकी पैदाइश चाइना में है लेकिन वो न्यूजीलैंड में है सिंस 1994. और उनको रिस्पॉन्स में पीटर्स ने कहा, आई नो यू जस्ट केम 5 मिनट्स अगो, गो बैक टू योर ओन कंट्री. फिर उसके ऊपर उन्होंने बोला
1: ये
0: कि
1: पार्लियामेंट में हुआ है,
0: ये पार्लियामेंट में हो रहा है. फिर पार्लियामेंट में वो ऑल्सो बोल रहे हैं कि दिस इज डेमोक्रेसी, ये ऐसा होता है, पता है तुमको मालूम नहीं इसके बारे में, यू नो तुम जहाँ से आते हो वहाँ पे. सो बहुत ही बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारे गए. एंड ये पहली बार नहीं हो रहा है जहाँ पे जो न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता है ये ऐसी बातें कर रहे हैं.
1: विंस्टन पीटर ने बहुत बार ऐसे किया है,
0: विंस्टन पीटर ने तो किया है, बट वो शेन जोन्स ने भी बीच में इंडियंस के लिए किया था ना कि सुनामी ऑफ बटर चिकन होने वाला है ये वो. और हम हमेशा हल्के में मजाक में निकाल लेते हैं ठीक है, क्योंकि हम काफी अकोमोडेटिंग लोग हैं, हमको लगता है कि हाँ चलो ठीक है ना यार,
1: बोल दिया,
0: हमको क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अभी मुझे लगता है कि यार ये तो ये इम्पोर्टेंट मैटर है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ये है कि तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो, तो उसमें तो तुम्हारे पास तुम्हें तो थोड़ी तो होनी चाहिए ना कि भाई
1: ज्यादा होनी चाहिए इनफैक्ट
0: क्या यू कांट बी रेसिस्ट.
1: या अभी हो रहा है कि देयर इज अ कॉल्स फॉर सैकिंग एंड रिएक्शन फ्रॉम ऑपोजिशन. लेबर एंड ग्रीन्स का कहना है दे कॉल फॉर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन टू सैक विंस्टन पीटर एज फॉरेन मिनिस्टर बिकॉज रेसिस्ट एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स थे.
0: ये अगर आपको लगता है कि यार ये सही डिमांड है ऑपोजिशन की, तो आपका यहाँ पे थॉट शेयर कर सकते हो, ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है एंड यू कुड बी फॉर पीटर विंस्टन एज वेल. Winston Peters,
1: well, Prime Minister Christopher Luxon ने ये बोला है, he called Peter's remarks attention seeking
0: वो तो हमेशा
1: for cheap
0: होता
1: headlines
0: है.
1: and urged voters to focus on the issues that matter.
0: अच्छा, के मतलब
1: उनका ये है,
0: मतलब
1: this is a response from Christopher Luxon.
0: अच्छा,
1: yeah, and Deputy PM जो David Semmer है, he agreed the comments were attention seeking and सही नहीं थे for a foreign minister, though noted. Peter spoke in his capacity as NZ First leader. उन्होंने ये बोला है.
0: अच्छा, तो NZ First से बोले
1: से बोला है. हिसाब से इन्होंने बोला है.
0: Foreign minister के हिसाब से नहीं बोला है उसने.
1: Yeah, and race relations जो commissioner है Melissa Derby, उन्होंने express किया है extreme disappointment और बोला है कि political leaders set the tone for acceptable public discourse and urge किया है politicians को not to divide for clicks.
0: आपके साथ भी यहाँ पे फोन लाइन ओपन करना चाहते हैं, आपका व्यू भी यहाँ पे जानना चाहते हैं. 0800-004-866 व्हाट इज योर टेक ऑन दिस.
1: क्या विंस्टन पीटर को रिजाइन कर देना चाहिए एज अ फॉरेन मिनिस्टर?
0: क्या आप चाहते हो कि वो रिजाइन करें?
1: क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए?
0: कि आपको ऐसा चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं यार, टेढ़ा है पर मेरा है.
1: आपका क्या टेक है इसके बारे में कि आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जब वो दो आपकी कम्युनिटी को अगर आपने नहीं बोल उन्होंने अभी नहीं बोला है पार्लियामेंट में पर फ्यूचर में पता नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये कमेंट के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
0: हाय,
2: हेलो रुज़बे, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड यार, हाउ आर यू डूइंग?
2: हेमंत हियर अगेन.
0: हाँ हेमंत
1: जी, बताइए.
0: हेमंत, आप क्या रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए ना प्लीज थोड़ा.
2: हाँ जी,
0: बताइए.
2: आप ठीक है?
0: हाँ
1: जी।
2: नहीं, मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब से ये ट्रंप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसने आया है तो उसको बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जिनको ऐसा मतलब फेवर मिलता है, और मतलब यहाँ पे भी हैं ऐसे लोग डेफिनेटली जो मतलब उसकी व्यू पॉइंट को वो करते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर अगर आप इसको मतलब किसी को आप कैसे रेशली कमेंट कर सकते हो ये सब, तो ऑफकोर्स उनका तो कोई बनता ही नहीं है, उसको तो इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए। वो किसी के लिए क्या एग्जांपल सेट करेंगे?
0: और ये
2: वही बात होगी,
0: खुद डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी कहां से कहते हैं ना फिर,
1: मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को वो।
2: एग्जैक्टली, तो फिर ये तो वही बात होगी कि इलेक्शन ईयर है, दे वांट टू वू अ लिटिल बिट ऑफ जो उनकी एक अमाउंट ऑफ जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, आई थिंक वो अपना उसको एक वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग दीस सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स एंड ऑल। और फिर वही है कि अगेन मुझे तो फिर वही है कि वो भी एक ब्राउन हेयर लगा के ट्रंप की तरह बिल्कुल बन जाए, फिर वो सेम चीज ही हो जाती है।
1: कहीं ना कहीं पे मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, क्योंकि ये जो आपने बोला ना कि डोनाल्ड ट्रंप का, आफ्टर दैट काफ़ी लीडर्स ने ये करना शुरू किया है कि शायद दिस इज़ अ वोट बैंक, यू नो, इससे कुछ लोगों को हम जिनके अंदर थॉट्स हैं वो हम बाहर निकाल सकते हैं ऑफ सिमिलर थिंकिंग एंड वी कैन हैव अ वोट बैंक। डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुली डिड इट।
2: फर्स्ट टेन्योर में जब ट्रंप मतलब आए थे वहाँ पे, वो उन्होंने इन सब चीजों पे इतना ज्यादा नहीं किया था, एंड देन सेकंड टेन्योर में नहीं आ सके, तो उन्होंने फिर एक ये टारगेट बनाया कि मतलब इस चीज को मैं अपना एजेंडा बनाऊंगा, एंड देन वो सक्सेसफुल हुआ, तो इसलिए काफी लोग उनको कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं।
1: या
0: तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, धरने पे जाना चाहिए हेमंत भाई?
2: यहाँ पता नहीं मैं क्या बोलूं,
0: अपने जेंजी को जगाना पड़ेगा ना, अपनी जेंजी सोई हुई है।
2: आप सीजेपी बनाना चाहते हो क्या?
0: नहीं मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सीजेपी बना सकते हैं, करी जनता पार्टी।
1: एक्चुअली
0: हाँ कर सकते हैं।
2: भगवान, मतलब कौन क्या बोले, अब वहां से तो चलो वो यूएस से डिपोर्ट करके से बुलाया था, यहाँ से किसको वहां डिपोर्ट करके बुलाएं, यहाँ किस दिपके को बुलाएं?
0: यूएस से डिपोर्ट करके डिपोर्ट थोड़ी
1: ये देखो
2: रिजाइन तो डेफिनेटली करना चाहिए उनके अगेंस्ट, मतलब ऑफ कोर्स उनको कोई मतलब वो नहीं है कि आप फॉरेन मिनिस्टर रह के इस तरह के रिमार्क कैसे दे सकते हो, डेफिनेटली
1: या इट्स नॉट राइट।
0: मेरे को लगता है इसके ऊपर हल्ला मचाना चाहिए हमने, बट
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: थैंक यू हेमंत यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग।
1: थैंक यू हेमंत,
2: नो वरीज, थैंक्स
0: यार,
1: बाय।
0: वी होप और भी कॉल्स आते, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो 5 बजे के बाद फिर आपके फोन लाइंस आपके लिए ओपन करेंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 12 degrees. Overnight temperature is going to be as low as 7 degrees tonight. Thode bahut showers ho sakte hain. Westerlies dying out early evening. 5:36 ko hoga sunset. Kal ka din mila jula sa rehne wala hai. Afternoon kal ki bahut beautiful rehne wali hai. And tomorrow's overnight is going to be as low as 3 degrees again.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
4: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 5:03 हुए हैं एंड ड्राइव शो जारी है आपके लिए. पावर ड्राइव एट 5. हाय सैंडी, हैप्पी फ्राइडे.
5: हैप्पी फ्राइडे रुस्बे. 5:03 हो चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे राजकर भी हमारे साथ यहाँ पे शामिल हो जाएंगे. कल के इवेंट के बारे में और भी बातें वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करने वाले हैं.
1: कल महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है गरबा. अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है तो थोड़े टिकट्स शायद अभी भी बाकी है eventstickets.co.nz पे. आप इसके टिकट्स जाके ले सकते हैं. लेकिन थोड़ी देर में राजघड़वी के साथ खुद बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है प्लानिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग फॉर टुमारो नाइट.
5: Yes,
1: इसके
5: yes.
1: साथ साथ हमने एक टॉपिक छेड़ा था पिछले घंटे, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम सबका बंद हो गया ना. इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है ना आपका भी?
5: नहीं, इट्स बैक.
1: ओह, इट्स बैक अगेन.
5: या
1: ओह वाओ. ओके, एनीवे, मेरे को लगा था कि खुशखबरी है इंस्टाग्राम बंद हो गया. लेकिन सैंडी, बिफोर यू गेट इनटू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू कीप ओपन द फोन लाइंस अगेन राइट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि पॉलिटिकल बातों पे काफ़ी व्यूज शेयर करने होते हैं लोगों को. और ये हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट विंस्टन पीटर्स, जिन्होंने काफ़ी रेशियल रिमार्क्स पास किए हैं पार्लियामेंट्री सेशन में. तो आपसे भी बात करते हैं. हाय,
6: मैंने कल भी फोन किया था. मेरा नाम विधि है.
1: हाय विधि.
5: यस विधि. या हाय विधि.
6: Have a different perspective to that resignation.
1: Please, please share.
6: From your previous caller, because first of all,
1: पहले perspective क्या है, पहले वो तो बोलो आपका.
6: मैं मुझे नहीं पता कि उनको resign करना चाहिए या नहीं. पर the thing is, जब इंडियन कम्युनिटी पे या सिमिलर कम्युनिटी पे जब कमेंट आई थी तो हमने कुछ नहीं किया. पर जब अभी दूसरे नेबरिंग एशियन कंट्री के लिए आया है तो वी वांट टू गो ऑन धरना.
1: नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ विधि, एक बात बोलता हूँ. नहीं नहीं, मैं आपको मुद्दा बताता हूँ क्या है फिर, क्योंकि आई थिंक यू गॉट इट, यू मिसअंडरस्टूड इट. पहले जो कमेंट आया था वो शेन जोन्स का कमेंट आया था, एंड ही इज नॉट द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर. यहाँ पे ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है. फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होकर आप एक रेशियल रिमार्क पास कर रहे हो, ये उसके कारण उस बोल रहे कि भाई यू स्टेप डाउन ऑफ दैट रोल, यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन दैट रोल.
6: आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी नीड टू गेज द फाइट. अगर हम देखें कि वो कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर रही है जिसके लिए ये रिमार्क पास किया है और हम जाके झंडा गाड़ रहे हैं, so you need to understand how impactful it will be. It could also look derogative because hamari community ke liye kuch nahi kiya hai, you know, it is not pastor.
1: I don't think it is about one community over here though. Vidhi, I don't think it is about one community. It is about go back to your own country. Is relevant for anyone and everyone who has left their home country and they've come here. It is not only for one particular community over here. That statement
6: could be. पर अगर वो लोग भाई भाई बनके घूम रहे हैं और हम इधर we are fighting for them. You think it will go? It is going to make sense?
1: I'm not saying I'm not saying we are fighting for them. We are fighting for ourselves. We are fighting.
5: So
1: for
5: it's about क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे we are just simply saying कि जब go back to कंट्री, ये जो रिमार्क कहीं से किसी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की ओर से आता है, आज एक पर्सन को आ रहा है, कल दूसरे को भी आएगा. एंड अगर हम विंस्टन पीटर एज अ पर्सनैलिटी भी बात करते हैं तो उन्होंने पहले भी काफी सारे कमेंट्स टू इंडियन कम्युनिटी किए हुए हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया.
1: ये तो और भी अच्छा मौका है कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम सबके लिए लड़ रहे हैं. सो वी आर नॉट बीइंग सेल्फिश कि भाई हमारे ऊपर आएगी तभी हम इसके ऊपर बात करेंगे. भाई ये किसी के ऊपर भी आया है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि ये गलत है. हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट?
6: ओके, yeah, that is right. It is wrong. It is not right. Hmm. Agree with that. But main ye bhi dekh rahi hu. I'm taking it like a diplomatic view.
1: Yeah, yeah.
6: So wo log bhi ek saath baith ke khana kha rahe hain aur hum yahan pe jaake jhande leke ghoom rahe. You know what I mean? Like it is also something. It's about us as well, right? Pehle apna khud ka ghar bachana hai na. Like it said in the air hostess, kya bolti hai? Khud ka mask lagao, fir bacche ka lagao.
5: Hmm.
6: You save yourself first, then you can save someone else. Make sense?
5: Yeah.
6: So, I understand where you're coming from, Rusbi, but you also

0: कर रही थी ना यहाँ पे, पीएम आ रहे थे तो उनकी तैयारी में वो बिजी थे वो टाइम पे।
1: आई डोंट थिंक सो, इट वाज वे बिफोर दैट।
0: नहीं नहीं, वो प्रेप बहुत पहले से चालू हुई थी ना।
1: इट वाज वे बिफोर दैट, इट वाज अ वेरी डेलिकेट टाइम, वी वर अबाउट टू साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हम खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम दूसरे की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं।
2: हाँ। कई बार क्या होता है कि
1: आई
2: टोटली अंडरस्टैंड या ना, आपका बहुत आपका जो व्यू है ना एज अ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, मतलब सही व्यू है वो आपका, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम तभी किसी, जब हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं ना, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए भी कोई आवाज उठाएगा। यू नो, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट अस कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो तभी हम आवाज उठाए। कई बार इट्स जस्ट अबाउट द इनजस्टिस या फिर रॉन्ग, कि रॉन्ग को एड्रेस कर रहे हम कि नहीं कर रहे हैं।
1: आई टोटली अग्री विद दैट, पर जब हमारे लिए ये रिमार्क किया था तब कोई और कम्युनिटी खड़ी थी हमारे साथ?
0: नहीं कोई, अरे अपनी खुद की, अपनी खुद की कम्युनिटी में खड़ी थी
2: ना, कि हमारी खुद की जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपने कोई तो बताया।
1: हम जिनके लिए अभी फाइट करने के लिए जा रहे हैं वो भी तो नहीं थे हमारे
2: साथ, बट वी 100% डिड दिस टॉपिक, हमने सुना वो उसके बारे में किया था।
1: इट इज वेरी डीप पॉलिटिक्स एज वेल, बिकॉज़ सैंडी वी हैव अ रिलेशनशिप विद देम बिकॉज़ दे आर आवर नेबरिंग कंट्री बैक होम, राइट? सो वी, आई अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप एज वेल, बट वी हैव टू लुक एट द वाइडर पिक्चर व्हेन वी आर स्टैंडिंग अप फॉर समवन। आई डोंट माइंड स्टैंडिंग अप फॉर एनी अदर कंट्री, प्रोबेबली इट कुड बी समवन एल्स टुमारो, देन आई वुड हैव स्टूड अप, माय स्टेटमेंट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट वेन इट कम्स टू this community, I don't know. I don't really know if I should be standing up for them.
2: That's totally okay.
1: They
2: have
1: never stood up for us.
2: मतलब वो आपका व्यू है। मैं एक और चीज आपको बोलती हूँ कि कई बार हम स्टोरीज में ना, जो गाजा में हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है उसके बारे में भी कई बार हम शेयर करते हैं। अभी जब वॉर हो रही थी ईरान में, जो कुछ हो रहा था उसके बारे में भी हम शेयर कर रहे थे। मतलब वो कम्युनिटी तो हमारे लिए नहीं खड़ी थी ना कहीं पे, जब हम उनके लिए कई बार स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो समटाइम्स इट्स जस्ट बीइंग थोड़ा काइंड की, या फिर जो रॉन्ग हो रहा है उसको एड्रेस करो, कई बार सिर्फ वही बात होती है।
0: और आज हम लोग उसको फ्लो बाय होने देते हैं, कल को जब हमारे बच्चे अगर ये स्कूल में एक्सपीरियंस करेंगे इसके अराउंड, इसके रिपरकशंस, क्योंकि जब एक मंत्री इस ऑडेसिटी के साथ ये बोलता है कि गो बैक टू योर कंट्री, तो उसका मतलब ये है कि इसके कोई रिपरकशंस नहीं है। तो अभी कोई भी उठ के हमको
2: मतलब
0: बोलेगा, ये
2: बंद करके नहीं ना बैठ सकते कि हाँ हो रहा है उनके साथ, गलत होने दो, इट्स ओके।
0: और
2: मतलब एटलीस्ट बात कर सकते हैं ना कि गलत है।
0: ये जो स्टेटमेंट है ना, गो बैक टू योर कंट्री, इट्स एप्लीकेबल, मैं वही बोल रहा हूँ वापस से, इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू वन पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वन कंट्री, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। कल को अगर ये हमें कोई जनरल पासिंग में बोलेगा हाँ गो बैक टू योर कंट्री, दे हैव नो रिपरकशंस टू दैट, दे विल से दैट,
2: क्योंकि उनको पता है कि ये बोलेंगे तो हम निकल जाएंगे। It's about accountability.
1: हमें पहले बोल ही चुके हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये first time, इनको शायद ये first time बोले होंगे, हमको तो बहुत बार comment आई है।
0: तो अभी हमें अगर मिल रहा है वहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनके काउंसलेट और वो लोग ने सब ये डाला है कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए, वील री थिंक आर रिलेशन, लिटरली ये जब बात हो रही है वहाँ पे, वील री थिंक आर रिलेशन विद न्यूजीलैंड, दैट इज अ बिग स्टेटमेंट यार टू कम थ्रू,
1: एंड दैट इज व्हाट आई मीन, दे हैव स्टूड फॉर देयर कम्युनिटी, व्हिच इज लाइक अ प्राउड थिंग फॉर देम, यू नो, डजंट मैटर हु दे आर, सिटीजंस ऑफ न्यूजीलैंड, दे आर सिटीजंस ऑफ चाइना, और दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया, बट देयर कम्युनिटी स्टैंडिंग बाय देम, व्हिच इज सच अ ग्रेट थिंग। एम्बेसी का तीसरे, आज दूसरा या तीसरा दिन है वो पार्लियामेंट के बाद, उनका स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट आ गया,
0: अरे इट इज,
1: हमारा तो अभी तक कुछ नहीं
0: हुआ, नहीं नहीं कुछ, अपना तो भाई
2: वो नहीं आएगा, हम ही यहां पे बात करके टाटा बाय कह देंगे।
0: बट थैंक्स विदी, थैंक्स फॉर योर कॉल,
2: या थैंक्स फॉर योर कॉल,
0: थैंक यू, हाय, आपका भी स्वागत है।
3: Hi, Rizvi. Sorry, I'm not giving out my name.
0: No problem.
2: That's
0: no problem.
2: Okay.
3: And I don't speak Hindi. I understand quite well, and therefore I was listening to this lady's conversation. I think you have wasted too much time on who herself sounded like a bit of a racist. You mentioned many times that it's not about who, it's about a problem. A problem mm-hmm. to be addressed, and she didn't get it.
0: No, she finally got it. You see, it takes time. Now we all are coming through our own traumas. So it takes time. I think it's important for us to understand we all have different traumas that we are dealing with.

0: आप लिस्टिंग टू हम्बलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स थ्रोबैक में आपके लिए मस्त गाना लेकर आएंगे। लेकिन स्टूडियो में क्या एनर्जी थी आज यार, मजा ही आ गया,
1: बहुत अच्छा लगा। मतलब 21 ईयर ओल्ड राज गढ़वी जो अपने कल्चर को लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग इवेंट गाइस,
0: इट्स गोना बी एपिक गरबा नाइट। आई डोंट थिंक ऑकलैंड आपने विटनेस किया होगा ऐसा गरबा इवेंट पहले।
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई बीन टू मेनी गरबा इवेंट्स, मुझे लगता है कि ये एनर्जी टोटल डिफरेंट रहने वाली है। सो या अब जो गर्ल्स नाइट है करना चाहते हैं, जो बॉयज नाइट करना चाहते हैं, गो फॉर दिस गरबा। आई विल से इवेंट्स टिकट्स .co.nz ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेरे को लगता है इसमें जाएंगे ना तो बहुत मजा करने वाले हैं।
0: यस एब्सोल्युटली। और मजे से याद आया, एक और जगह पे आप मजे कर सकते हो और वो है बाली और बैंकॉक हमारे साथ।
1: ओह या,
0: हम जा रहे हैं ईस्टर पे, दिस ईस्टर 2027 वी आर गोइंग टू बाली।
1: वहां पे भी अलग ही वाइब होने वाली है।
0: या वी आर गोइंग टू बाली एंड बैंकॉक। और देखो जेन ज़ी ने हमारे वाइब को वैलिडेट कर दिया भाई। जेन ज़ी ने बोला क्या, नहीं मजा आया यहाँ पे। सो I just want to say, like, you know, if your parents are planning, you know, if your parents want to go on a trip, आप अपने parents को भी हमारे साथ भेज सकते हो। We are very parent friendly also,
1: and kid we are friendly very also,
0: young friendly also. But yeah, if you want to know more about this, तो आप drive लिखकर भेजिए 5599 पे, and we'll send you the package details and all the other details that are required for you to take a decision. August के महीने में, मतलब next कल से, अगर कोई भी रजिस्टर करता है इस ट्रिप के लिए, तो एवरीवन हु गेट्स रजिस्टर्ड अगस्त के महीने में विल गेट वन फ्री नाइट अकोमोडेशन एनीवेयर इन न्यूजीलैंड आपकी पसंद,
1: और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड
0: फॉर टू पीपल। ब्रेकफास्ट फॉर टू पीपल इंक्लूडेड, वन नाइट इंक्लूडेड। सो यू कैन गो आउट, यू कैन ट्रैवल। अगर आप किसी और को भेजना चाहते हो क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है, तो आप किसी और को भी भेज सकते हो उसके लिए। तो फटाफट इस मौके पर आप चौका जरूर मारना। आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए लेकर आने वाले एक बढ़िया सा थीम या शाउट आउट क्या होने वाला है आज सैंडी?
1: आज कियारा अडवाणी,
0: आज कियारा अडवाणी का बर्थडे है।
1: या शी इज सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे टुडे।
0: ऑलराइट, कियारा अडवाणी को शाउट आउट आज ट्रेंड मेकर्स में।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: 6 बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स, लास्ट डे ऑफ जुलाई. एंड आज ट्रेंड मेकर्स में हम शाउट आउट दे रहे हैं. उससे पहले सैंडी, हाय.
4: अ वेरी गुड इवनिंग.
3: हाउ आर यू फीलिंग नाउ?
4: I'm feeling a lot better. It's not like better. On and off, yeah.
3: It's on and off. Okay. We hope that you take the weekend to recover yourself properly.
4: Or maybe Monday is my leave.
3: Oh, sick leave le rahe ho Monday ko. Yaad rakhna, ab rules change ho gaye hai sick leave ko lekar.
4: 27 mein change ho gaye wo.
3: Nahin, Monday, abhi se nahin change ho gaye.
4: Nahin, nahin.
3: Achha, 27 mein change ho rahe.
4: Yeah.
3: Toh kuch, koi toh bol raha tha ki kuch change ho gaya abhi se. Nahin,
4: 2027 se ho gaya.
3: Achha, 2027 se change ho rahe.
4: वैसे हाँ. इसके बारे में हमारा एक पॉडकास्ट भी आने वाला है अगले हफ्ते.
3: ओके.
4: अबाउट लीव्स एंड एवरीथिंग.
3: या एनीवे, उसके बारे में हम और भी बातें करेंगे बाद में. लेकिन आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कियारा आडवाणी का.
4: कियारा आडवाणी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. उनके हिट गाने हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं. काफी लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए हैं कियारा. मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे नाम सुने हैं कियारा. एक टाइम था मैंने नहीं सुना था नाम.
3: हाँ हाँ.
4: पर अभी रिसेंटली मैंने काफी सुना है. बट आपसे सवाल है,
3: कियारा के साथ भी यही हुआ ना, कियारा का भी नाम कियारा नहीं है.
4: तो वही सवाल है.
3: हाँ.
4: आपको बताना है कि कियारा आडवाणी का जो फर्स्ट नेम है कियारा की जगह, उनका रियल नेम क्या था एंड उसके पीछे कहानी है. रियल नेम क्या था, उनका रियल नेम आपको लिख के भेजना है 5599 पर.
3: 5599 पे फटाफट लिखकर भेजिए.
4: दिस विल बी वेरी
3: एंड वी विल गिव यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कि एक्चुअली में उनको किसने इंस्पायर किया नाम चेंज करने में.
4: अच्छा हुआ नाम चेंज कर लिया, बिकॉज़ उसके हस्बैंड के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता.
3: हाँ, एक्चुअली में नहीं होता प्रॉब्लम सैंडी, उसके हस्बैंड के लिए बहुत इजी हो जाता. एक्चुअली अभी भी उसके लिए हस्बैंड के लिए इजी होगा ना, क्योंकि वो बोल रहा होगा कि अरे नहीं मैं तो तुम्हें.
4: एनीवे, सो आप नाम लिख के भेजिए. 5599 इज अ नंबर.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits और Kiara Advani के बहुत ही beautiful गाने आपको हम सुनाने वाले इस पूरे घंटे. ये MS Dhoni में भी थी क्या Kiara Advani?
1: Yeah, MS Dhoni ने साक्षी का role इसी ने तो किया था.
0: Oh yeah.
1: So it was Disha and Kiara Advani.
0: Disha was first one.
1: Yeah. So first movie of जो Kiara Advani की थी वो Fagli थी जिसका गाना भी हम सुनने वाले हैं. But उसके बाद जो second movie की थी that was MS Dhoni. बट yeah. मुझे लगता है कबीर सिंह वाज द मूवी जिससे हर किसी ने पहचाना,
0: निखरी बाहर आई.
1: या
0: क्योंकि काफी
1: हर किसी का काफी लोगों का क्रश बन गई आफ्टर कबीर सिंह.
0: बहुत अच्छा उसने रोल किया था.
1: या
0: इट वाज नाइस.
1: सो या हमने सवाल पूछा था कि Kiara Advani का रियल नेम क्या है एंड काफी लोगों ने सही आंसर भेजा है.
0: यस
1: द रियल नेम इज आलिया.
0: आलिया इज द रियल नेम. एंड एक्चुअली में जो सलमान खान है उन्होंने एडवाइस किया था Kiara Advani को कि नाम चेंज कर तेरा, आलिया मत रख क्योंकि आलिया भट्ट के साथ लोग काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, यू नो, कर सकते हैं देखो.
1: एंड इट वाज अ वेरी स्मार्ट चॉइस. कंफ्यूज ना
0: Siddharth कंफ्यूज नहीं हुआ. Siddharth जस्ट वेंट फॉर द बेटर आलिया.
1: या इन हिज माइंड जो बेटर आलिया थी.
0: या दैट्स व्हाट ही कैन से ना.
1: या
0: ही वेंट फॉर

0: The other Alia.
1: Other Alia.
0: Yeah.
1: Anyway, also Kiara Namjota was inspired by Priyanka Chopra's character in Anjana Anjani.
0: 2010 में ये मूवी आई थी, आई थिंक तब कियारा अडवाणी भी बच्ची होगी और उनको प्रियंका चोपड़ा का वो रोल बहुत अच्छा लगा था एंड उसमें उसका नाम कियारा था, सो वहाँ से फिर दे वर लाइक ओके हम खुद का नाम, वो पहले एक्चुअली में ना उनका फ्यूचर डॉटर का नाम कियारा रखने वाली थी वो, लेकिन फिर उसने खुद का नाम ही कियारा रख दिया.
1: ओके कि चलो मेरे ही एक बार और जन्म हो रहा है.
0: मेरी मेरे को जरूरत है मेरे बॉलीवुड के जन्म के लिए. बढ़िया. एनीवे आपको पता है सैंडी उनका पहला जॉब क्या था?
1: क्या
0: उनका पहला जॉब था? एज अ प्ले स्कूल टीचर.
1: ओह वाओ.
0: सो बिफोर गेटिंग ऑन इनटू बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी मॉम वाज द हेड मिस्ट्रेस, तो वो जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, डायपर चेंज करती थी, नर्सरी राइम्स सुनाती थी बच्चों को. तो ये था उनका फर्स्ट गिग. She did
1: the degree in mass communication as well, but acting hamesha se dream tha, so that's how she eventually entered in acting.
0: तो अभी उनका जो first movie था फगली, उसका ये गाना आपके लिए रफ्तार की आवाज में, enjoy कीजिए.
2: Right, DJ वाले भाई साहब लगा दो कोई डुपचिक डुपचिक है.

0: की पार्टी खत्म। चलो।
1: डिब्बा खुल गया।
2: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसी से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
5: टाटा नैनो ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और एसयूवीज ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से। लीप मोटर, डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। विजिट टाटा नैनो सुपरसाइट। पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुड बाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए। और हाँ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके मदर इन लॉ के अलावा। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया apply.
6: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
9: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.

0: easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Trendmakers mein aaj Kiara Advani ka birthday hum celebrate kar rahe hain. Unke liye back to back unke hi matlab unke liye nahi unke back to back songs aapko suna rahe hain. So if you love Kiara Advani, this hour is for you.
2: Yes, and Kiara Advani ke baare mein baatein karte hain, to she got a family connection with few celebs as well, Ruzbe. अशोक कुमार उनके स्टेप ग्रेट ग्रैंडफादर हैं
1: मदर साइड पे
2: या सो मदर साइड पे सो अशोक कुमार इज अ हर स्टेप ग्रेट ग्रैंडफादर
1: और सईद जाफरी मालूम है आपको कौन है
2: या
1: वेटरन एक्टर सईद जाफरी वो उनके ग्रैंड अंकल है
2: ओह वाओ
1: और फिर जूही चावला के साथ भी उनका कोई रिश्ता है
2: सो ऐसा बीच में उनका नॉट डायरेक्टली शी वॉज एनी किड ऑफ एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी बट देन कहीं ना कहीं में उनके कनेक्शन जरूर थे
1: जी वो जूही चावला को जूही आंटी बोलती है एक्चुअली मैं कियारा अडवाणी के बारे में जब पढ़ रहा था मैं तो एक बहुत ही क्रेजी इंसिडेंट हुआ उनके साथ वो एक बार फायर में ट्रैप हो गई थी सो ये अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गई थी मैक्लॉडगंज मैं भी गया हूँ यहाँ पे मैक्लॉडगंज गया हूँ मैं वो भी गई थी हिमाचल प्रदेश में और वहाँ पे क्या हुआ था हैवी स्नोफॉल था तो ये इंडोर्स अटक गए थे और इन्होंने ना हीटर कुछ ज़्यादा ही देर ऑन रख दिया जिसके कारण उनके रूम में आग लग गई सब मैनेज तो कर लिया सबने सेफली बाहर इवैक्यूएट करना लेकिन कियारा उसको अभी भी वो हॉन्ट करता है वो इंसिडेंट एंड शी रिमेंबर्स इट एज द मोस्ट फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ
2: या नियर डेथ एक्सपीरियंस था वो कियारा एडवानी के लिए सो कियारा एडवानी का जो नेक्स्ट गाना हम सुनने वाले हैं ये कौन सी मूवी का है
1: ये आप बताना हमें यहाँ पे मैसेज करके कि ये कौन सी मूवी का है क्योंकि ये मुझे लगता है ये आप सुनना ये वो गाना है नहीं नहीं मैं बताता हूँ ये गाना कौन सा है ये गाना वो है जो मीका सिंह ने खुद ने ही गाया हुआ गाना और दो बार रिक्रिएट किया है
2: okay.
1: और बहुत सही गाना है ये विकी कौशल के साथ ये फीचर था मुझे लग रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट यू टेल मी विच मूवी दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मूवी ये मूवी मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ
2: ओ ये जो विकी कौशल के साथ है
1: विकी कौशल के साथ एक मूवी की थी ना यार
2: या, मेरे को
1: बहुत सही थी वो
2: मर्डर मिस्ट्री टाइप
1: मूवी थी बहुत सही मूवी थी वो
2: मैं नाम बोलूं क्या
1: क्या है नाम
2: हाँ गोविंदा नाम मेरा
1: अरे हाँ गोविंदा नाम मेरा मस्त मूवी है
2: या
1: उसका ये गाना है एंजॉय कीजिए

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. वैसे ये गाना जो आप सुन रहे थे ये थी from Kartik Aaryan and Kiara Advani's movie सत्य प्रेम की कथा सत्य प्रेम की कथा
1: बहुत अच्छी लगी मुझे भी ये मूवी
0: एंड इसमें कियारा आडवाणी की एक्टिंग बहुत कमाल थी और कार्तिक आर्यन भी फॉर अ चेंज बहुत अच्छा कर रहे थे
1: वो अच्छा ही करता है उसमें वैसे दोनों का मेरे को पेयरिंग अच्छा लगा था
0: कार्तिक आर्यन को उसमें देखा है लव आजकल में
1: वो उसका फैक्टर कुछ और था
0: आप उसको चंदू चैंपियन में भी देखो
1: मेरे को अच्छी लगी चंदू चैंपियन
0: अच्छी है लेकिन आप उसको देखो अभी सिर्फ
1: क्यों मतलब
0: आप देखो वो जॉन अब्राहम लाइट है
1: नहीं ऐसा देखो अभी सबका वो रहता है कोई बोलेगा कि अक्षय कुमार लाइट है कोई कहता है जॉन अब्राहम लाइट है भाई कार्तिक आर्यन है
0: अक्षय कुमार भी लाइट है
1: नहीं नहीं
0: नहीं भूल भुलैया सीरीज में अक्षय कुमार लाइट है
1: वो भूल भुलैया में पहले अक्षय कुमार था वो अक्षय कुमार लाइट हो गया
0: फुल अक्षय कुमार लाइट करता है
1: एनीवे कमिंग बैक टू कियारा आडवाणी
0: अच्छा
1: सो ये मूवी काफी अच्छी थी सत्य प्रेम की कथा एंड इसके बाद जो
0: अभी जो टॉपिक था ना वो टॉपिक बहुत मीनिंगफुल था उसमें
1: यस 100% एंड जो दिखाया गया था जिस वे से प्रेजेंट किया गया था
0: कंसेंट के ऊपर था ये पूरा मूवी एक्चुअली में एंड इट वाज एंड प्लस कैसे विक्टिम की गलती नहीं होती है तो इट वाज अ वेरी डीप मीनिंगफुल मूवी काफी कॉमेडिक वे में दिखा रहे थे वो लोग एंड इट वाज अ वेरी नाइस वॉच यू शुड वॉच इट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट
1: एंड शेरशाह मूवी जिसमें हमने दोनों को सिद्धार्थ एंड कियारा आडवाणी को साथ में देखा और जिसका गाना एक्चुअली में उन्होंने अपनी वेडिंग वीडियो में भी यूज किया काफी लोगों के लिए
0: और फिर काफी लोगों ने भी यूज किया
1: काफी लोगों ने वो कॉपी किया उसको यूज किया स्टेप्स तक एक्चुअली में कॉपी किए सिद्धार्थ एंड कियारा आडवाणी के
0: कपड़े भी कॉपी किए थे ना
1: कपड़े भी कॉपी किए काफी लोगों ने सो काफी लोगों के लिए यू नो पहले जैसे अनुष्का शर्मा का जो वेडिंग सॉन्ग था काफी लोगों के लिए वो ट्रेंडिंग था बट आफ्टर दिस मूवी इन दोनों का गाना जो हम सुनने वाले हैं वो गाना नहीं लेकिन एक और गाना है जो कि बहुत ट्रेंडिंग हो गया था शादी के लिए
0: आपको पता है कियारा आडवाणी का पहला अपीयरेंस कब हुआ था
1: कब
0: फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस उनका हुआ था जब वो 8 महीने की थी एक बेबी क्रीम के एड में आई थी वो व्हेन शी वाज 8 मंथ्स ओल्ड सो या दिस इज कियारा आडवाणी स्पेशल फॉर यू एंड दिस इज नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम शेरशाह

0: जुगजुगियों का ये गाना आप सुन रहे थे, रंगसारी, कनिष्ठ सेठ एंड कविता सेठ, ये दोनों भाई बहन है ना, नहीं माँ बेटे ये दोनों, हमेशा मैं पूछता हूँ ये. anyway, उनका ये गाना आप सुन रहे थे और ये रंगसारी भी गाना बहुत, एक्चुअली मैं कियारा आडवाणी के जो भी गाने हैं काफी पॉपुलर हुए हैं डांस नंबर्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं ये.
1: शी इज अ वेरी गुड डांसर और कहीं ना कहीं पे उनका जो फेस रिजेम्बलेंस है वो माधुरी दीक्षित के साथ भी है. काफी लोगों ने, बिकॉज यू नो जो ब्यूटी जो है बोला जाता है, जैसे मधुबाला की ब्यूटी बाद में माधुरी दीक्षित में दिखाई दी, जैसे ब्यूटीफुल फेस जिसे कहते हैं, और वैसा ब्यूटीफुल फेस जो है वो कियारा आडवाणी
0: का फेस एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है. अब पता नहीं यार मेरे को, ऑनेस्टली आलिया भट्ट का फेस भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, था.
1: कई क्यूट होते हैं, कई क्यूट की कैटेगरी में आते हैं, कई प्रिटी की कैटेगरी में आते हैं, कई एक ब्यूटीफुल के कैटेगरी में भी आते हैं.
0: आलिया कौन से कैटेगरी में आती है आपके लिए?
1: आलिया आई थिंक इट्स शी इज इन अ क्यूट कैटेगरी, उसका फेस अगर देखा जाए तो शी इज इन अ क्यूट type of category.
0: And Kiara is in beautiful category.
1: Kiara is in beautiful category.
0: Oh my god. A lot of Alia fans are not going to be happy with you, Sandy.
1: Arre nahi. But anyway, I'm just talking about
0: you're
1: the...
0: You're used to it.
1: Yeah. Well, yeah, Kiara Advani jo hai, वैसे इन्होंने तेलुगु में सबसे पहले एक्चुअली में डेब्यू किया था, भारत अने नेनु ये मूवी आई थी जो कि मैसिव ब्लॉकबस्टर थी. सो उसके बाद शी एंटर्ड इनटू हिंदी सिनेमा.
0: क्या बात है. तो इसी बात पे अभी हम आपको जो गाना, हम कुछ गाने छोड़े जा रहे हैं आपके लिए, बिकॉज कियारा आडवाणी के गाने इतने टॉप हिट है दैट वी आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा गाना इग्नोर करें. सो वी आर गोना प्ले सम गुड सॉन्ग्स ऑफ कियारा आडवाणी फॉर यू.
1: या सो
0: बट वील ऑल्सो लाइक टू थैंक जिन जिन लोगों ने यहाँ पे हमें मैसेज किया.
1: प्रीतिका थैंक यू सो मच, आप एवरग्लेड ड्राइव से हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच हमें, हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे, हमें मैसेज करने के लिए. ऑल्सो कुछ और लोगों ने भी जिन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने भी मैसेज किया.
0: करण आपका भी यहाँ पे मैसेज आया, थैंक यू सो मच करण, आपने भी मैसेज किया इधर. एंड मिथुन का भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच मिथुन फॉर योर मैसेज एज वेल, वी रियली अप्रिशिएट योर मैसेजेस ओवर हियर. तो आप ऐसे ही भेजते रहिए. इसी के साथ हम अभी कल्टी मारते हैं. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, प्यार के लिए. सैंडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओवर द वीकेंड. मंडे को आना जरूर, ठीक है.
1: Yeah, bye guys, take care.
0: Bye bye, have a lovely weekend and we'll see you on Monday.
2: Oh my god, this is original.

80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए।
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ, डॉन को पकड़ना मुश्किल।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
0: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
0: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: From climate change to a lack of loose change. From small changes to changes in global power. Change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News. Change is in the air.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
8: Thank you.
9: It's all I can think about.
8: What does it sound like?
9: Yeah, I'd rather not.
8: Go on, why don't you have a crack?
9: Okay, got a plumbing problem.
8: Oh, I need a bit more than that.
9: They've got your back.
8: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
9: Oh, okay.
10: There's no better plumber to give it a crack.
8: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
9: No, I want a plumber.
11: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
12: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Kukar 50-inch smart TVs, $499. Vogue black glass wall ovens, $349. 60-centimetre black range hoods, $79. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
13: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland council.govt.nz/where-it-goes पे. तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट फ्लाइट ऑन हम
2: Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3, start.

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
0: Night Flight

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Night Fly.

0: show with Vijay and Pooja.
1: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: की पार्टी खत्म, चलो।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Bajaye hit gaane.
6: Night Fly.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-4626-26 टुडे।
0: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance center sale event today till Sunday.
6: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
5: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance center, 9 Sylvia Park Road.
7: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahin bhi.
10: Saturday Breakfast on Hum.
11: Aagya.
10: You're listening to Abhineet.
12: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal, kem cho, namaskar, main hu abhi aapke saath mein jud gaya hu, jabki aaj hai pehli tarikh August, 1st of August, aise mein subah 6 par aapke saath mein ho gaya hu on your favorite dial, Hum Studios 104.2 FM, saath mein Rova par aap hame desh mein sun rahe hain ya fir videsh mein sun rahe hain, aapka khaas swagat karte hain, welcome to the show, ye hai Saturday morning breakfast show, aap bhi nikal pade hain, raaste pe hain, aur apni manzil ki aur pahunch rahe hain, aahista aahista, to hamara साथ देते रहिएगा क्योंकि ढेर सारी बातें आपके साथ में आज होगी। और इस नोट पर शुरुआत करते हैं, उस लम्हे को बुरा मत कहो, उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ठोकर खाने के बाद में जीने की अंदाज वही लम्हा सिखाता है। और इसको और भी ठोस देते हुए आपको यह भी मालूम होगा कि एक मोटरसाइकिल भी ना किक से स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से आज का जो ब्रेकफास्ट शो है आपके साथ में, इसको किक स्टार्ट कर रहे हैं और आपको भी हमारी ओर से अ वेरी गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग की बेस्ट विशेस लिए मैं हूं अभी आपके साथ में ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम। और आपको बता दें कि कैसा मौसम आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि आज के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 15 डिग्रीज तक इसका अंदाज़ा लगा गया है। और साथ में जो सनराइज सुबह की पहली किरण रहेगी 7:20 AM। और इसके अलावा ओकलैंड के लिए खासकर मेनली फाइन अपार्ट फ्रॉम क्लाउड एंड आइसोलेटेड शावर्स, यानी कि हल्की फुल्की बारिश आपको कई जगहों पर मिल सकती है। इसके अलावा लाइट विंड्स रहेंगे और ऐसा होते होते साउथ ईस्टर्लीज डेवलप हो गए आफ्टरनून में। और ये सभी कुछ है। और इसके साथ में अगर जो नेशनली देखें तो आपके शहर में कैसा मौसम रहेगा, मिक्स्ड वेदर बताया गया है हैमिल्टन के लिए। साथ में रोतोरुआ के लिए आज अनुमान लगाया गया है कि 0 degrees तक टेम्परेचर रह सकती है। सो इट्स गोइंग टू बी कोल्ड आउट देयर, आप अपना ख्याल रखें। हैमिल्टन के लिए 2 degrees तक रह सकता है टेम्परेचर। इसके साथ साथ जो सनशाइन फोरकास्ट किया गया है सिर्फ पूरा दिन के लिए तोपो और न्यू प्लिमथ में, और इसके अलावा बाकी के बाकी शहरों में ऐसा मिक्स्ड वेदर सा मौसम रहेगा, जबकि हल्की फुल्की बारिश भी रहेगी और बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको धूप भी नज़र आएगी। तो ऐसे में काफ़ी ठंड आज रहने वाली है, तो आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा। इफ़ यू आर हेडिंग आउट देयर तो 2-3 layers पहन कर ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में आपको सर्दी या ज़ुकाम हो सकती है या फिर आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि आज जबकि है 1st of August, तो मौसम के अलावा आपके साथ में शेयर करेंगे क्या कुछ कहां पर हो रहा है, ये सभी कुछ हमारे साथ में। जबकि 12 मिनट हो गए हैं 6 बजकर, अभी भी आपने ट्यून इन किया है। वेलकम टू द शो, सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है अभी के साथ में। और जो मैजिक नंबर्स हमारे हैं 5599, इस पर अगर जो आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाए तो बढ़िया लगेगा।

0: गेम्स पूरे पैमाने पर जारी है। ऐसे में पोल वॉल्ट में 3 कीवीज हैव क्वालिफाइड, जिनमें शामिल है नीना कैनेडी और साथ में एलिजा मकार्टनी और इसके साथ साथ में ओलिविया मैकटगार्ट, और ये सभी कोई शामिल हो रहे हैं, जबकि इनके पास में चांसेस है गोल्ड मेडल जीतने के। और इस पर जो अपडेट्स है आप तक हम बारी बारी से पहुंचाते रहेंगे। तो ये सभी कुछ आपके साथ में है, और जो नाम एक बार फिर से, एलिजा मैकटनी, ओलिविया मैकटगार्ट और इमोगन एरिस, ये है जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन वुमेन्स पोल वॉल्ट। इसके साथ साथ में अभी तक जो मेडल्स हाथ लगे हैं न्यूजीलैंड के, इसमें डेविड लीती है जो वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया, इसके साथ में जोई होब्स है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 100 मीटर्स हिस्ट्री कायम किया है। इसके साथ में क्लेयर बर्ट ने भी गोल्ड जीता है इंडिविजुअल मेडली स्विमिंग में, और इसके साथ में और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अभी भी अपने नाम एक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो इंटरनेशनली देखें तो जहाँ पर कल काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में मोरक्को से स्पेन में एंटर किया है उनके बोर्डो से, तो लगभग कुछ 60,000 के जो नंबर से ये बताए जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग मोरक्को से स्पेन इलीगली बॉर्डर्स को पार करते हुए पहुँचे हैं, और इस पर स्पेन के पीएम ने भी एक बयान दिया है। तो ये सभी कुछ जो है आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहे। वैसे मैं जब देख रहा था तो ओवरनाइट कोई ऐसी खबर नहीं है जो ब्रेकिंग है जो आपको मैं बता सकूँ जो ओवरनाइट हुई है, लेकिन समटाइम्स दे से नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़।
1: Non-stop Bollywood.
2: हम जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा, हुनुआ west में?
5: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: breakfast on Hum.
1: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. और जबकि आज है पहली तारीख अगस्त, तो फेस्ट ऑफ अगस्त आपको याद दिला दूं, श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में ये आज अखंड रामायण पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं. जबकि फेस्ट ऑफ अगस्त है तो जो प्रोग्राम है सुबह 7 पर, यानी कि अगले हाफ एन आवर में रोड पूजा के साथ में ये स्टार्ट होगी. और उसके बाद में कुछ 8:45 AM से जो अखंड रामायण पाठ है इसकी शुरुआत हो जाएगी. तो आपको याद दिला देते हैं कि आप यहाँ जा सकते हैं 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, और आप जाकर भाग ले सकते हैं इस अखंड रामायण पाठ में. और आपको थोड़ी देर में और भी बताएंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, ये सभी कुछ हमारे साथ में. और सैटरडे मॉर्निंग, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और ऐसे में आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. अभी अभी आपकी आँख खुली है, वेलकम टू द शो. अभी का साथ है, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Yeah, that's right. ये है Saturday Morning Breakfast Show. मैं हूँ अभी आपके साथ में और आप भी सुबह सुबह पहली चाय का मजा ले रहे हैं. Welcome to the show. और इसी तरह से हमारा साथ देते रहें. आप जबकि आज है 1st of August, तो अगर जो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी ओर से आ वेरी हैप्पी बर्थडे. या फिर कोई है स्पेशल आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनकी खुशियां आप हमारे साथ में बांट सकते हैं. और 5599 इसके साथ अगर जो वेडिंग एनिवर्सरीज है, तो चलो हमने आपको इसी बहाने याद भी करा दिया. 1st August है आज, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसका भी आप जो मैसेज है प्यारा सा आप भेज सकते हैं हमारे पास में 5599 पर, और यहां से आपको शाउट आउट करेंगे. और अगर जो ये भी नहीं है तो गुड मॉर्निंग तो बनता है 5599 पर, आप भी अपना जो प्यारा सा मैसेज है हमारे पास में भेज सकते हैं.

0: हम पर सरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का कारवा जारी है और आपको बता दें कि आज ओकलैंड जिनेफेस्ट मार्केट भी लगेगी, जबकि आज दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक आप जा सकते हैं ओकलैंड आर्ट गैलरी एट 1 किचन स्ट्रीट ओकलैंड सिटी सेंटर में, जहां पर 10 बजे इसकी शुरुआत होगी। और आप सोच रहे होंगे कि जिनेफेस्ट आखिर है क्या, तो जिनेफेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने इंडिपेंडेंट खुद के सेल्फ पब्लिश्ड वर्क्स को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि वो खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस या उनकी कहानियाँ या फिर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है जो शायद आपको मेनस्ट्रीम पब्लिशिंग में नहीं मिलेगी। तो जो इन्होंने सेल्फ पब्लिश किया है, ये सभी कुछ आपको एक गैलरी में पढ़ने का मौका, देखने का मौका, ब्राउज करने का मौका। अगर जो आप एक बुक वर्म हो, आपको पढ़ना पसंद है, तो खास आपके लिए ओकलैंड आर्ट गैलरी में आज एक रहेगी एट 1 किचनर स्ट्रीट इन ओकलैंड सिटी सेंटर। और 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक आप यहां जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री एंट्री है आपके लिए। और इसके अलावा अगर जो आप आउटडोर्स पर्सन हैं, आपको साइकिलिंग पसंद है, तो मूनलाइट राइड आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दी वेस्ली कम्युनिटी सेंटर 740 सेंड्रिगम रोड एक्सटेंशन पर माउंट रोस्किल में। और यहाँ पर 5 बजे शाम से लेकर 8 बजे रात तक आज एक फ्री इवेंट है जहाँ पर आपको सिर्फ अपने बाइसिकल लेकर प्रेजेंट होना है और वहाँ पर आपको बाइक को डेकोरेट करने का मौका मिलेगा, साथ में फेस पेंटिंग, लाइव म्यूजिक और इसके अलावा बाइक गेम्स एंड एक्टिविटीज़ भी रहेंगे और लोकल फूड स्टॉल्स तो रहेंगी ही। और ये जो एक फ्री कॉस्ट इवेंट है, यहाँ पर आप अपने जो बाइसिकल है लेकर जाकर और अंडर मूनलाइट राइड कर सकते हैं अलोंग विद अदर साइक्लिस्ट। तो ये सभी कुछ मौका है। और जबकि आप सेंड्रिगम एरिया में रहेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ईटरीज है जिसका आप मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। अगर जो आपने अभी तक कुछ प्लान्स नहीं बनाए तो हमने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, आगे चलकर एक और एक इवेंट के बारे में बताएंगे जिसका हम प्रमोशन भी करते आ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे बस थोड़ी ही देर में। और 5599 पर आपके प्यारे से जो मैसेज है आप भेज सकते हैं हमारे पास में। मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब। वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
2: And if you're just joining us after the break, we're talking about holy $10 deals on Uber Eats. Find $10 ding dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं हम पर रवि का साथ है और एक और एक इवेंट है जिसके बारे में आपसे हम बताते आ रहे हैं गरबा नाइट विद राज गढ़वी आज होने को है लाइव इन ओकलैंड जबकि आज सैटरडे 1st ऑफ अगस्त ऐसे में इनका जो धमाकेदार इवेंट है आज रहेगा महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में और अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो कम से कम टिकट्स बाकी है और आप अपना आज ही अभी ही बुक कर लीजिए बाय गोइंग ऑन टू events.tickets.co.nz पर जाकर आप अपने टिकट्स ले सकते हैं क्योंकि राज गढ़वी आज हंगामा करने वाले हैं अपने फुल एनर्जी के साथ में गरबा खेलने वाले हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय डांसिंग अवे द नाइट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स याद रहे एट द महात्मा गांधी सेंटर इन ओकलैंड आज रात को ही इनका इवेंट रहेगा events.tickets.co.nz पर जाकर आप जो अपना टिकट्स है ले सकते हैं

सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये, एंड इट्स अमेजिंग अगर जो हम सुबह सुबह किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं तो समवन इज सेलिब्रेटिंग द बिग 65. जी हाँ, हैप्पी 65th बर्थडे है नाना सुभाष चंद का ऑफ कासलफिन ड्राइव विमोत पे है, और बेस्ट विशेज और लव मिला है ऐसे मौके पर. आपकी वाइफ है सुरोजवती, साथ में बच्चे हैं, ग्रैंड किड्स है, स्पेशली लव मिला है फ्रॉम आहाना बली. तो हैप्पी 65th बर्थडे सुभाष चंद जी आपको हमारी ओर से, साथ में पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हैव अ वंडरफुल डे. जबकि आज आपका स्पेशल डे है, ऐसे में आप बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा. कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग.

0: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
1: Saturday breakfast on Hum.
3: Yo.
2: You're listening to Avineet.
4: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपका हम सफ़र आज के लिए सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में हम पर आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आपका साथ दे रहा हूँ। आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है, आपको मैं विश कर रहा हूँ वेरी गुड मॉर्निंग अपनी ओर से, और इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। आप भी अपने गुड मॉर्निंग के जो विशेज़ है 5599 पर हमारे पास में भेज सकते हैं, और इसके अलावा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज तो ये भी आप हमारे साथ में बांट सकते हैं ये सभी कुछ। और आज का जो पहला समाचार रहेगा फ्रेश न्यूज़ एट नेक्स्ट आवर 8 पर आपके लिए रहेगा, लेकिन फिलहाल आपके साथ में इस आवर को स्टार्ट करते हैं कि किस दिशा में आपको जाना है विद वर्षा सिंह धनोआ।

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: मैं हूं अवि विद सैटरडे ब्रेकफास्ट शो. और आपको हमने लास्ट आवर पर बताया कि श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन पर आज अखंड रामायण पाठ हो रही है. आज से शुरुआत है इसकी, कल तक रहेगी. इसके अलावा एक दो और ऐसे इवेंट्स हैं जो अगले वीक यानी कि 8 अगस्त को रहेंगे. सबसे पहला पल आपको बता दूँ मेघ उत्सव के बारे में, जहाँ पर इंडियज मानसून फेस्टिवल को ओकलैंड में ही सेलिब्रेट किया जाएगा. एक ऐसी फेस्टिवल जहाँ पर आपको एक मज़ा आने वाला है, आपको उन एक्सपीरियंसेस उन मेमोरीज की याद दिलाने वाली हैं जहां पर आप बड़े धूमधाम से मानसून को सेलिब्रेट करते थे इंडिया में, भारत में. लेकिन यही मौका अब आपको यहां ओकलैंड में मिलेगा, जबकि इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन द 8th ऑफ अगस्त अगले वीक सैटरडे को एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर. तो 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक ये जो इवेंट है यहाँ पर रहेगी. साथ में कल्चरल परफॉर्मेंसेस, फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़, ये सभी कुछ आपके लिए मेघ उत्सव में रहेगी. इसके साथ साथ अगले वीक 8 अगस्त को एक और एक इवेंट है, जहाँ पर कीवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला. और अगर जो रामलीला में आप भाग लेना चाहते हैं, इसे जाकर देखना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं, तो वैदिक सेंटा 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोई में ये इवेंट रहेगी. टिकट्स $10 पर पर्सन है. चिल्ड्रन अंडर 5 इनके लिए फ्री एंट्री है. और टिकट्स के लिए और इंक्वायरीज के लिए मास्टर अशोक को 02117954599 पर आप कॉल कर सकते हैं.

हम पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, मैं हूं अभी आपके साथ में। और पोल वोल्ट जो कि कॉमनवेल्थ के अंतर्गत जो कंपटीशन है आज सुबह सुबह हो रही है, जिस पर हमने अपडेट्स आपको दिया था, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के हाथ 2 मेडल्स कम से कम इस इवेंट में लग सकते हैं, जबकि कुछ जो 2 कॉम्पिटिटर्स है ये जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मकाटनी और साथ में इमोगन एरिस, ये दोनों के हाथ में 2 मेडल्स लग सकते हैं, जबकि टॉप 3 में ये क्वालिफाई हो चुके हैं। इसके साथ में जो फेवरेट है फॉर गोल्ड मेडल, ये ऑस्ट्रेलिया की नीना कैनेडी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी का जो हाइट है 4.65 मीटर्स तक ये पोल वोल्ड कर रहे हैं। हालांकि इन तीनों ने पहला ऐसा जंप लिया है इतने हाइट पर, लेकिन ये भी कहना है कि जो कॉम्पिटिशन का प्रेशर है ये कुछ भी करवा सकता है। तो इस पर जो लेटेस्ट मेडल टैली रहेगी इस कॉम्पिटिशन के लिए, आप तक हम जरूर थोड़ी देर पर जैसे ही परिणाम लगता है, रिजल्ट्स हमारे हाथ लगते हैं, आप तक पहुंचाएंगे।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Media Works complaints. How can I help?
7: My kids won't shut up.
6: I'm not sure that's our problem.
7: They keep reciting lines from one of your radio ads.
6: Aw, cute.
7: Yeah, well, it was cute.

0: solving ventilation problems for over 18 years.
1: If it's savings you want, it's savings you'll find at Briscoe's with supersized store-wide savings for the whole house until Sunday. So hurry in, grab a basket or trolley and bag supersized store-wide savings only till Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्टुगेदर ओकलैंड।
3: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
4: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
5: शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Saturday breakfast on Hum.
6: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विज़िट करें। ये मैसेज एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

और मैं यहाँ हूँ सीबीडी में आपके लिए ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम। और जबकि बाहर निकलकर मैंने थोड़ा देखा तो पूरा का पूरा ग्लूमी डे है सीबीडी में और क्लाउडी है, भीगा भीगा सब मौसम है। तो ऐसे में मैं अब पता लग रहा है कि लोग आहिस्ते आहिस्ते मैसेज क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी शायद अभी ही जाकर उठे होंगे जबकि 7:30 बज रहे हैं, या फिर अभी भी आप खाट में हो और प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हो। तो आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार है। और पहला मैसेज जो आया है, गुड मॉर्निंग अभी, ऑसम प्रोग्राम एंड नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच क्वीन, आप हमारा साथ दे रही है। इसी तरह से आप भी साथ दीजिएगा, अगर जो आप सुन रहे हैं इस वक्त हमें 104.2 FM साथ में रोवा पर, तो हमें आपका मैसेज का इंतज़ार है क्योंकि पता तो लगे कि कौन हमारा साथ दे रहा है।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और कहते हैं ना, बी बोल्ड बी स्ट्रोंग बी वाटरफॉल, यानी कि जो पानी का बहाव है इसे आप किसी भी तरह से रोक नहीं पाते हैं। आप कितने भी पत्थर इनके रास्ते में लगा दें, इनको ब्लॉक करने के लिए ये अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। तो इसी को लेकर हमने एक फेसबुक पोस्ट डाला है हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर। इसे आप जाकर चेकआउट कीजिए और नीचे कमेंट्स में आप अपने भी कुछ पिक्चर्स डाल सकते हैं या फिर आपके पास में भी कुछ कहने को है यहाँ पर आप जरूर अपना जो कमेंट है अपलोड कर सकते हैं।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
3: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Spending more time indoors this winter? Freshen up with the Resene Winter Sale. 50% off test pots, 20% off Resene interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Resene, the paint the professionals use. T's and C's apply.
8: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on with up to 40% off women's and men's clothing, women's lingerie and men's underwear. At least 30% off kids' clothing and super deals on beauty. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Toast, coffee or hum ka energy.
11: Subah ho gayi aamu.
10: Saturday breakfast on Hum.
0: हम पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में 18 मिनट बाकी है 8 बजने में और 8 पर आपके लिए फेस न्यूज़ ऑफ द डे भी रहेगी। और इसके साथ जो रिपोर्ट सामने आ रही है सेंट्रल ओटागो में साउथ आइलैंड में स्टेट हाईवे 85 जो कि कीबन कैबन और पामस्टन के बीच में, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद पामस्टन नॉर्थ, लेकिन साउथ आइलैंड में कैबन और पामस्टन के बीच में जो स्टेट हाईवे 85 है और साथ में कैबन और ओट्रम के बीच में जो स्टेट हाईवे 87 है इसे क्लोज किया गया है। जबकि यहाँ पर विंट्री वेदर के कारण काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। तो मेट सर्विसेज ने ऐसा बताया है कि जो सिस्टम है हालांकि ओवरनाइट ये दूर जा रही है आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन स्टेट हाईवे 85 और स्टेट हाईवे 87 रिमेंस क्लोज्ड बिटवीन कैबन एंड आउटरम और साथ में कैबन एंड पामस्टन। तो अगर जो आप भी ट्रकी हो और या फिर आपका जो रूट है इस रास्ते से पड़ता है तो दोबारा एक बार फिर आप इसको रीराउट कर लीजिएगा।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: मैं हूँ छोटा सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
3: आप भी सुबह सुबह अपने चाय या कॉफी का मजा ले रहे हैं तो मैं हूं अभी आपके साथ में लेकर आया हूं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. ऐसे में 8:02 हो रहे हैं हमारे स्टूडियोज में. इस हवा पर भी आपके साथ में ढेर सारी बातें हैं. अगर जो आप भी अपना गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना चाहते हैं 5599 इज योर नंबर और 9 पर आपके लिए मस्ती मीठा भी रहेगी 104.2 FM साथ में रोवा पर मेरा ढेर सारा प्यार.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और झूम झूम कर गाना भी चाहिए क्योंकि वीकेंड है भाई। तो ऐसे में जो दूसरा मैसेज है आया है, गुड मॉर्निंग अभी भाई, थैंक यू सो मच 79463, आपको भी ये दिन बिल्कुल प्लेजेंट रहे और एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, यही कहना चाहेंगे आपसे। और इसके साथ में आपको बता दें कि एक जो साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड है इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं रवितेश देव को, जो कि प्रेजेंट करने वाले हैं खास आपके लिए भजन जेम्स लाइव। जी हां, रवितेश देव आपके लिए खास लाइव बैंड के साथ में लेकर आ रहे हैं एक ऐसी शाम, एक ऐसी इवनिंग जहां पर डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स रहेंगे विद अ लाइव बैंड। ये कुछ अलग होने वाला है और जितना भी प्रोसीड्स है इस इवेंट से ये सीधे जाएंगे गिफ्ट लाइफ फिजी को। तो आप भी अपना सहयोग देने के लिए पहुंचिए सैटरडे 22 अगस्त को एट 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोए, जहां पर टिकट से $30 और चिल्ड्रन अंडर 5 बिल्कुल फ्री है और यहां पर ढेर सारे रिफ्रेशमेंट्स और साथ में स्नैक्स भी अवेलेबल रहेंगे। टिकट्स आप ले सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम eventbrite.com, साथ में जेस फ्रेश पपटोए, साथ में वेली फ्रेश पपटोए और शिव प्रसाद इन केल्स्टन से। तो ये सभी कुछ आपके लिए है एक ऐसी शाम जहां पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एक तो मजा भी ले सकते हैं एक ऐसे इवनिंग का जहां पर डिवोशन और साथ में कम्युनिटी के साथ में मिलकर आप एक अच्छे कार्य के लिए, गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी के लिए प्रोसीड्स आगे बढ़कर दे सकते हैं। तो ये भजन जेम्स जो है ये आपके साथ रहेगा विद रवितेश देव।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, ये है Saturday Breakfast Show. मैं हूँ अभी आपके साथ में. Hi Komal, thank you so much आपके messages के लिए. और ऐसा ही आपका भी दिन बिल्कुल fun filled रहे. Enjoy your special day. जबकि weekend है, ऐसे में groceries भी करनी होंगी और साथ में ढेर सारा काम भी करना होगा, लेकिन इसके बीच में enjoy करना मत भूलिएगा. तो इसी तरह Komal, have a wonderful day, यही आपसे कहना चाहेंगे. आपने भी अभी तक message नहीं किया तो 5599 पर आप अपना प्यारा से message हमारे पास में भेज सकते हैं, जबकि हम studios में यहाँ पर चार दीवारी में बैठकर आपके लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं आपके फेवरेट डायल हम पर. तो कनेक्टिविटी बस यही टेक्स्ट प्लेटफॉर्म से ही बनती है. तो 5599 पर अपना प्यारा सा मैसेज हमारे पास में भेजिए. इन द मीन टाइम Komal, आपके लिए ये अगला गाना.

हम पर आप सुन रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो, जबकि आज 1st of August है। ऐसे में नए महीने की शुरुआत है और आपके लिए खास ये मैसेज है, अगर जो आपको सुकून और शांति से भरे रास्ते की तलाश है

www.chinmaya.org.nz पर www.chinmaya.org.nz पर जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं. तो आपको भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है तो लुक नो फर्दर. एक और एक मैसेज आया है, प्यारा सा रोमा ने भेजा है एक बेहतरीन मैसेज, इसे आपके लिए बस थोड़ी देर में पढ़ेंगे.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: आप भी अपने सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो का मजा ले रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं। मैं हूं अभी आपके साथ में, और रोमा ने मैसेज किया है अपने प्यारे से हबी गैरिश को विश कर रही हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और ऐसे मौके पर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव मिला है इनको बोथ सन आयुष और आयान की तरफ से। साथ में गैरिश के इनलॉज हैं मिस्टर एंड मिसिज रामकरण फ्रॉम माउंट वेलिंगटन, इन्होंने गैरिश को ढेर सारा प्यार दिया है। ढेर सारे बधाइयाँ आ रही हैं गैरिश की ओर, और हमारी ओर से भी आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे गैरिश, इन्जॉय योर डे, हैव अ स्पेशल वन। पूरी हम की टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और ऐसे मौके पर चलो रोमा, हमने सोचा कि आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू हम पर गैरिश को ये गाना सुनवाते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और कम्युनिटी न्यूज में आगे चलते हुए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि 22nd और 23rd अगस्त को रहेगी एट बेकनहेड स्काउट्स होल। अगर जो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स आर वेलकम, आप सभी इसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए विजिट कीजिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर NZCA प्रेसिडेंट पंकज को 0209085067 पर कॉल करें। और इसके साथ में एक और एक मैसेज आया है, लव योर वर्क, थैंक यू सो मच, आपको काम पसंद है, थैंक यू सो मच, इसके लिए शुक्रिया एंड हैव अ वंडरफुल डे, 94455, थैंक यू। और इसके साथ में अगर जो आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आपके घर पर कोई खास ओकेशन स्पेशल दिन है जिसे आज आप मार्क कर रहे हैं तो 5599 इज द नंबर। और याद रहे, 9 पर आपके लिए मस्ती मीठा भी रहेगी, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: आप सुन रहे सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है और अब समय हुआ करण ओजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव इन ओकलैंड होने को है, जबकि ये जो कॉन्सर्ट है ब्रेथ टेकिंग कॉन्सर्ट स्पार्क अरीना ओकलैंड में ऑन ट्यूसडे 25th ऑफ अगस्त रहेगी। ऐसे में आपने अभी तक अगर जो टिकट्स नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द ले लीजिए, और टिकट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हम rova.nz जा सकते हैं या फिर livenation.co.nz। एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें सब देखना चाहते हैं और इनके साथ में स्पेशल गेस्ट इकी भी रहेंगे जो इस कॉन्सर्ट में और भी एटमोसफियर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रीफाइंग बनाएंगे आपके लिए। और अभी के लिए आपको चाहिए डबल पास, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना होगा कि करण ओजला का डेब्यू सॉन्ग का टाइटल क्या था। तो जब आप इस जवाब को हमारे पास में भेजें, मैसेज स्टार्ट करें लेटर्स के और ए से, क्योंकि इनके बिना आपके मैसेज ड्रो में शामिल नहीं होंगे। तो के ए लिखे, फिर जवाब लिखे और 5599 पर टेक्स्ट करें अभी, जबकि आपके पास में सुनहरा मौका है चेन से, आप अपने नाम को ड्रो में शामिल कर सकते हैं टू विन अ डबल पास। तो यही हमें जानना है आपसे, हमने यही पूछा है कि इनके डेब्यू सॉन्ग का टाइटल क्या था, बस इतना ही आपको बताना है। और स्पार्क अरीना ओकलैंड में जबकि 25th अगस्त को इनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है, तो शायद ये डबल पास आपके हाथ लग जाए। और अगर जो आप इस लक को ट्राई नहीं करना चाहते तो हम rova.nz या फिर livenation.co.nz पर जाकर अपने टिकट्स अभी ही आप ले सकते हैं।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: It's Woolworths Half Price Week. Get Plowman's Glorious Grains Loaf 700 gram for just $2.09 each. And fresh chicken thighs bone-in skin-on for just $5.99 a kg. 1 week only while stocks last. TCs and exclusions apply.
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
6: Dash!
7: Māori Mā, every day we make choices. Choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
12: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
14: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
15: Search Xero with an
16: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: The beat of Bollywood.
17: World's best. Hamari koi brand nahi hai.
1: Saturday breakfast on Hum.
0: जी हाँ, ये है सरडे ब्रेकफास्ट शो, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और जबकि करण ओजला का जो प्रमोशन है हमने आपको मौका दिया, तो लोग ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऑफ द मार्क है। तो हमने सोचा चलो दोबारा ये क्वेश्चन सवाल आपसे पूछ लेते हैं। इनकी जो डेब्यू सॉन्ग थी करण ओजला की, ये 2016 में आई थी और इनके डेब्यू सॉन्ग का टाइटल हमें चाहिए। तो आप जब ये मैसेज लिख रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं, तो लेटेस्ट के ऐ बिल्कुल मिस ना कीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री जो है ड्रो में शामिल नहीं होंगी। तो कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जहां पर लेटेस्ट के और ऐ नहीं लिखे हुए हैं, तो आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, लेटेस्ट के ऐ लिखिए और विकीपीडिया पर जाकर फाइंड आउट कर लीजिए। ये क्लू मैं दे रहा हूँ आपको कि 2016 में इनका डेब्यू एल्बम, डेब्यू सॉन्ग राधा रिलीज़ हुआ था, उस सॉन्ग का टाइटल क्या था। करण ओजला का जो डेब्यू सॉन्ग था उसका टाइटल क्या था 2016 में, और बस यही इतना ही आपको बताना है। लेटेस्ट के साथ में अपने जवाब को भेजिए 5599 पर।

0: Saturday breakfast on Hum. Musti meter on Hum.
1: Yo, suta sa chora.
0: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में. और देखते देखते इट्स 9 o'clock. और ऐसे में जबकि वी आर हाफ वे थ्रू द शो, सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है, फर्स्ट ऑफ अगस्त. और अब समय हुआ कि हम आपके लिए लेकर आए मस्ती मीठा, एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर आपको हंसना ज़रूरी है. और हंसना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है और मिडल वीक में आप काफ़ी बिजी होते हो. और इसके साथ साथ में भाग दौड़ के बाद में एक वीकेंड ही आपको मिलता है जहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो. और अपने लिए इतना तो आप कर सकते हो कि आप मुस्कुरा सकते हो. बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस. और एक ऐसी चीज़ होती है स्माइल जो बिल्कुल कॉन्टेजियस है, जो आपको देखता है मुस्कुराते हुए ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है. तो ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा मस्ती मीठा में. और आज का मस्ती मीठा थोड़ा अलग होने वाला है. कैसे? बस अभी आपको बताते हैं.

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है मस्ती मीठा। और मस्ती मीठा में आज जबकि कहा था कुछ अलग करेंगे तो कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस। जी हाँ, अगर जो आप देखेंगे तो कॉमेडी जो लोग करते हैं उनके लिए कॉमेडी टाइमिंग एक अलग चीज़ होती है और अक्सर ये बतलाएंगे आपको कि जितने भी इमोशंस हैं इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है कॉमेडी करना। और अगर जो कॉमेडी की बातें करें तो उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है मिमिक्री करना। तो कई ऐसे आर्टिस्ट है, टैलेंट है जो कहीं ना कहीं मिमिक्री करते हैं और आपने इनको देखा है, आपने इनको पसंद किया है, जो दूसरे कलाकारों की आवाज़ निकालते हैं, उनको मिमिक करते हैं, उनकी नकल करते हैं। ग्लोबली अगर जो देखें, खासकर इंडिया भारत से, बॉलीवुड में विजय सचान और साथ में VIP है, या फिर डॉक्टर संकेत भोसले हैं, उनकी पत्नी हैं सुगंधा मिश्रा, ये सभी कोई बेखूबी से और मिमिक करते हैं, अलग अलग कलाकारों की आवाज़ को पहचानते हैं, उनको ऐसे जीते हैं कि ये खुद ही वही उनके ट्रेट में आ जाते हैं, ये सभी कुछ आपके लिए करते हैं। इसके अलावा एक और एक कलाकार है, डेंटिस्ट जो है, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है, सुमेध शिंदे, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और डबिंग भी करते हैं क्योंकि दे बिकम सो गुड ओवर द टाइम कि कहीं ना कहीं इनको पिक्चर्स में डबिंग करने के लिए भी बुलाया जाता है फॉर द मेन आर्टिस्ट। तो ये सभी कुछ है और ऐसे ही मिमिक्री पर बातें करने जा रहे हैं, आपको कुछ सुनवाने जा रहे हैं, जहाँ पर जो नाम अभी हमने लिया है इनमें से एक कलाकार ने और एक मिमिक्री की है बॉलीवुड के स्टार सलमान खान की। तो नकल तो सलमान खान की है, आपको सुनने के बाद में ये अंदाज़ा लगाना कि आर्टिस्ट कौन थे, बस इतना ही आपको करना है। सुनवाने जा रहे हैं आपको इनकी आवाज़।
1: तुम सबके पास तो इतनी है और मेरे पास
2: एक भी नहीं,
1: और मैं तो बस यही कहता रह जाता हूँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। और सोनल जी, मैं आपको सुनता हूं।
0: तो आपको पता लगाना होगा कि कौन आर्टिस्ट है जिन्होंने नकल की है बॉलीवुड की भाईजान सलमान खान की। 5599 पर अपना जवाब जरूर भेजें और इसके बाद और भी बातें करेंगे इसके बारे में।
3: शादी कर सकते हैं
4: क्वीन विक्टोरिया की।
3: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिल फरेब।

0: हम पर अभी का साथ है। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था, एक ही जवाब आया है, वो भी सही, विन ने सही अंदाज़ा लगाकर भेजा है। चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ये आवाज़, इस कलाकार की आवाज़ सुनिए जो इमिटेट कर रहे हैं या फिर नकल कर रहे हैं सलमान खान की। हमको ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम चाहिए, तो सुनिए इसे और अंदाज़ा लगाइए। 5599 पर आप अपना जो जवाब है भेज सकते हैं।
1: तुम सबके पास तो इतनी है और मेरे पास
2: एक भी नहीं,
1: और मैं तो बस यही कहता रह जाता हूं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। और सोनल जी, मैं आपको सुनता हूं, बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट चल रहा है।
0: तो ये जो आर्टिस्ट है, और जब मैं इनका क्लिप देख रहा था तो इनका जो मैनरिज्म है और जिस तरह से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ये देते हैं, ना तो सिर्फ आवाज़ की बल्कि चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है ये भी बिल्कुल बढ़िया बेखूबी से ये निभाते हैं। तो चलो ऑप्शंस देते हैं आपको, क्या ये वीआईपी की आवाज़ थी या फिर डॉक्टर संकेत भोसले की आवाज़ थी या फिर जय विजय सचान की आवाज़ थी। आपको सिर्फ सही अंदाज़ा लगा कर 5599 पर जवाब देना है, बस इतना ही करना है।

0: on Hum.
1: तुम सबके पास तो इतनी है और मेरे पास
2: एक भी नहीं.
1: और मैं तो बस यही कहता रह जाता हूं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता. और सोनल जी, मैं आपको सुनता हूं.
3: ऑलराइट, तो आपको यही अंदाजा लगाना है कि किस आर्टिस्ट की ये आवाज थी. रविकाश, आपने कहा है द आंसर इज द सेकंड नेम यू सेड. तो जो दूसरा नाम हमने कहा था ये कहा था VIP, और जबकि पहले ऑप्शन में थे जय विजय सचान, फिर VIP या फिर डॉक्टर संकेत भोसले. इन तीनों में से आपको लगता है कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सलमान खान की मिमिक्री की है या फिर उनको नकल किया है. 5599 पर ही आपको अपना जो जवाब है

0: हम पर मस्ती मीटा का सेगमेंट है और जो आवाज़ आप सुन रहे थे ये जय विजय सचान की थी और सही जवाब आया है 64467 की ओर से, साथ में विन की ओर से। और इसके अलावा रोहित आपका भी मैसेज आया था, आपने भी सही पहचाना। सुजन आपने भी जवाब दिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बस थोड़ी देर में आपको जय विजय सचान के बारे में कुछ और भी बताएंगे या फिर कुछ अलग आपको सुनवाएंगे। समय की ओर देखते तो इट्स 20 मिनट्स आफ्टर 9।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
7: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sale event today till Sunday.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में ओनली ऑन हम। और जबकि बातें हो रही थी जय विजय सचान की, तो इनकी जो पैदाइशी है 18th जनवरी 1987 को हुई थी हमीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी में। और साथ साथ इनकी मम एक ब्यूटिशियन थी बाय प्रोफेशन और इनके पिता के एक फ़ोटो स्टूडियो थे। और इसके अलावा इन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत की थी विद द टीवी अपीयरेंस इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2017 में, और फिर उसके बाद में इनको आपने देखा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, साथ में यारों की बारात में, और आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो ये सभी कुछ मल्टी टैलेंटेड जय विजय सचान करते हैं। क्या आप में भी ये खूबी है? क्या आप भी किसी की नकल करते हो किसी फेमस सेलिब्रिटी की? तो आप हमारे पास 800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू टेक यू ऑन एयर। अगर जो आप में वो टैलेंट है तो क्यों ना इसे बताएं, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, हमारे लिसनर्स के साथ में, ओनली ऑन 800-004-866। बी इट मिमिक्री या फिर आप सिंगिंग करते हो, कोई भी टैलेंट है जिसे आप मस्ती मीठा में हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो।

आप एंजॉय कर रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ में टिल 12 और ऐसे में आपको बता दूं कि 10 पर आपके लिए समाचार भी रहेंगे। लेकिन अभी जो खबर हाथ आई है, कल शाम को कुछ एथक्वेक एक्टिविटी हुई थी एट मैग्नीट्यूड ऑफ 4.6, जबकि 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पोरीरुआ। इसे यहाँ पर काफ़ी लोगों ने महसूस किया इन द लोअर हाफ ऑफ नॉर्थ आइलैंड और साथ में टॉप हाफ ऑफ साउथ आइलैंड। इसका जो सेंटर है अकॉर्डिंग टू द मैप जो मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में है और काफ़ी लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया एज अ रंबल, लाउड रंबल बिफोर द क्वेक हिट। और कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल शार्प जोल्ट या स्वे जैसा इन्होंने महसूस किया है। तो जियोनेट ने रिपोर्ट किया है कि कुछ लगभग 9,000 लोगों ने इसको महसूस किया, इस शेकिंग को। और इसके साथ साथ इट्स अ टाइमली रिमाइंडर, आपको बताया जाता है कि जब भी आप कहीं पर भी ह्यूज जोल्ट महसूस करें तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड ड्यूरिंग शेकिंग। इसे करने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपने भी क्या इस जोल्ट को महसूस किया? अगर जो आप वेलिंगटन के इलाके में हैं या फिर पाम्स्टन में हैं या फिर ऑन द टॉप ऑफ साउथ आइलैंड है, तो 5599 पर ज़रूर अपने एक्सपीरियंस हमारे पास साथ में शेयर कीजिएगा या फिर 0800 004866 पर आप कॉल करके भी बातें कर सकते हैं।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब कोई भैया को खटकने लगता है। तो आज रात को गरबा नाइट है विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड, और आपके पास में अभी भी मौका है। अगर जो आपने टिकट्स नहीं लिए हैं, इनको प्रेजेंट कर रहे हैं लोटस प्रोडक्शन, साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप लेकर आ रहे हैं राज गढ़वी को। कल स्टूडियो में भी ये थे हमारे। तो आज 5 अगस्त महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में इनका जो लाइव परफॉर्मेंस है ये होने वाला है। एक ऐसा रीज़न आपको देने वाले हैं जहां पर आप जाकर झूम सकते हैं एंड यू कैन हैव ऑल द मस्ती दैट यू वांट, और साथ में गरबा खेल सकते हैं। तो टिकट्स के लिए eventstickets.co.nz पर जाकर अपने टिकट सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि एक ही रात है जहां पर आज आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, काउंटलेस मेमोरीज बना सकते हैं, एंड ऑल ऑफ इट इज टुनाइट।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नारा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Sif Rovapur.
1: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
2: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Clean up your space with 20% off Dissolvit cleaners. And save $160 on a Super Tub single cupboard laundry tub, now $539. T's and C's apply. Shop in store and online at Mitre 10.
3: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
5: That's right, ये है मस्ती मीठा अभी के साथ में, और जबकि कुछ 17 मिनट बाकी है 10 बजने में, और 10 पर आपके लिए रहेगा जुगाड़ जंक्शन। और मस्ती मीठा में कुछ अलग अलग गाने आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो थोड़ा मस्ती भरा हो।

0: मिट्टा ऑन हम
1: मस्ती मिटा में मैं हूँ अभी आपके साथ में और 10 पर समाचार रहेंगे। लेकिन आज जबकि फर्स्ट ऑफ अगस्त है तो ऐसे में न्यूजीलैंड में जो ग्रेहाउंड रेसिंग है इस पर बैन आज से ही लागू हो रहा है। तो इस मौके पर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि एटलीस्ट 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स है जो 150 ग्रेहाउंड्स को फ्लाई करेंगे अक्रॉस टू ऑस्ट्रेलियाज ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पर ये जो ग्रेहाउंड रेसिंग है ये अभी भी लीगल है। और कुछ ग्रेहाउंड ट्रेनर्स है जो न्यूजीलैंड में है और इस बैन को रिस्पोंड करते हुए वो अपने ग्रेहाउंड्स को मूव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टेट्स में। तो काफ़ी लोग खुश हुए थे इस बैन को लेकर, जबकि पहली बार अनाउंस की गई थी दिसंबर 2024 में और लेजिस्लेशन हुआ अप्रैल में। तो आज से ये जो ग्रेहाउंड रेसिंग है इसका जो बैन है इन इफेक्ट हो गया है न्यूजीलैंड में।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ छोटा सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में 10:02 हो रहे हैं जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ये मोड जो है जंक्शन जो है ये है जुगाड़ जंक्शन जहां पर आपके लिए लेकर आते हैं कुछ क्विक फिक्स सॉल्यूशंस और साथ में कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करके और पैसे की बचत कर सकते हैं. यही हमारी मोटिव होती है और समय भी बचा सकते हैं. तो ये सभी कुछ हमारे साथ में इस आवर पर रहेगा. अगर जो आपके पास में कुछ ऐसे आइडियाज़ है जिन्हें आपने अभी हाल ही में डिस्कवर किया है और शेयर करना चाहते हैं, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू और इफ़ इट वर्क्ड फॉर यू, आपके लिए काम किया है और आप भी काफ़ी सरप्राइज थे इनको इस ट्रिक को जानकर, तो 5599 पर आप अपना जो ट्रिक है या फिर लाइफ हैक है आप हमारे पास में भेज सकते हैं. एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद अदर लिसनर्स. तो ये सभी कुछ हमारे साथ में इस आवर पर रहेगा.

हम पर आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और उनके साथियों को, और ये है जुगाड़ जंक्शन। और जुगाड़ जंक्शन में आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे आप अपने घर के दीवारों को साफ कर सकते हैं। अक्सर जब आपकी टेनेंसी पीरियड अप हो जाती है तो आपको अचानक से रियलाइज़ होता है कि कितना सफाई साफ सफाई कर कर वापस लौटाना होगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक कुछ ऐसे टिप्स है हमारे पास में जो कहीं ना कहीं आप अपने घर के दीवारों को साफ कर सकते हैं आसानी से, और इसके बारे में और भी बातें करेंगे। लेकिन अक्सर आप हमें अपना जो प्यार है देते रहते हैं 104.2 एफएम पर, साथ में रोवा पर, इसके अलावा हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर 5599 पर भी आप अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं, या फिर जब आप रेडियो शाय होते हैं तो 0800004866 पर आप कॉल करके ओफिया भी बातें करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा हमारे हम फेसबुक पेज पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज ही मैंने एक ऐसा पोस्ट डाला है जहां पर एक सीनिक वाटरफॉल का वीडियो मैंने अपलोड किया है, और इसके साथ में एक प्यारा सा मैसेज भी डाला है। तो अगर जो आप इन्हें जाकर इस पोस्ट को जाकर चेकआउट करेंगे, वहां पर कमेंट्स में आप भी मैंने कुछ कहने को कहा है आपको, आप अगर जो उस रिक्वेस्ट को भी कंप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे अन्य साथी भी अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज में कुछ ना कुछ पोस्ट अपलोड करते हैं, और जानकारी या इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स को लेकर ये सभी कुछ अपलोड किया जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अक्सर यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होती है आपके लिए। तो अगर जो अभी तक आपने हम के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए। खासकर आज के जो वीडियो है इसको जाकर आप देखिए, खूबसूरत है और एक प्यारा सा मैसेज भी है आपके लिए।

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: जुगाड़ जंक्शन है ये, और पहला टिप आज इस वीक के लिए, अगर जो बच्चे हैं घर पर और कहीं ना कहीं क्रेयन्स के साथ में, कलर पेंसिल्स के साथ में ये मार्क कर देते हैं दीवारों पर, तो आपके पास में एक मार्केट में अवेलेबल है पिंक पेस्ट, अगर जो आप इसे ढूंढेंगे सुपरमार्केट्स में खासकर और इसे लाकर इस्तेमाल करेंगे, तो एक डैम क्लोथ के साथ में थोड़ा सा पेस्ट लेकर अगर जो आप दीवार पर इसको यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे खुद ही कि काफ़ी आसानी से ये जो मार्क्स हैं ये मिट जाते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़े और हेवी ग्राइम को या स्टबन स्टेन्स को आप रिमूव कर सकते हैं आसानी के साथ में।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on, with up to 40% off women's and men's clothing, women's lingerie and men's underwear. At least 30% off kids' clothing and super deals on beauty. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
7: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
8: Now I'm here.
7: Back here now.
8: Here I am.
7: Super birthday deals. On now at Perkinsave. Now I'm back here.
9: The sleepless

0: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Put your head to Gandhi.
4: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
5: जुगाड़ जंक्शन में मैं हूं अभी आपके साथ में और एक मैसेज आया अर्जू ने मैसेज किया है कि पिंक पेस्ट सडनली वर्क्स वंडर्स इन्होंने इस्तेमाल किया है और कहा है कि ये वाउच कर सकती हैं कि पिंक पेस्ट सडनली वर्क्स और इसके साथ साथ में अगर जो कोई टफ ग्राइम है या स्टबन स्टेन्स है जो आपको हटाने में मुश्किल हो रही है तो आजकल शुगर सोप वाइप्स भी अवेलेबल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े थोड़े जगहों पर शायद आपको थोड़ा हेवली प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन It surely does work. तो ये भी एक सजेशन या सुझाव है इसके साथ में थोड़ी देर में अगर जो समय रहा तो बातें करेंगे कि कैसे आप अपने गैरेज को भी रिवैम्प कर सकते हैं

हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन और हमारे पास में कॉल आया था, विकास ने कॉल किया, बोला भाई जितना आप बता रहे हो ये सारे वीकेंड में ही काम करवाने पर हमको ज़रूर जोर देंगे कि जितने काम हैं आपको आज ही निपटाने, तो ऐसा नहीं है, टिप्स दे रहे हैं आपको जुगाड़ जंक्शन है। अब हम क्या करें, ये हमारा शो का फॉर्मेट है कि हमको टिप्स आपको देने हैं और आप जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जो गैरेज की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की और स्टोरेज की, तो ऐसे में अगर जो आप के गैरेज में काफ़ी सामान बिखरे पड़े हुए हैं, क्लटा है, तो सबसे पहला पहल आपको यही सोचना होगा कि किस सामान को आपको रखना है और किसको निकालना है। हम अक्सर काफ़ी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन ओवर टाइम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं और द पाइल कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो सबसे पहले पहल आपको यही वेरीफाई करना है कि किस सामान की आपको ज़रूरत है और किसकी नहीं, और उसी तरह से आप उसको गेट रिड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे कि कैसे फिर बाकी बचे हुए सामानों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: जुगाड़ जंक्शन में अभी हम बातें कर रहे थे गैरेज को कैसे सॉर्ट आउट करना है. तो वंस आपने अपने क्लटर को क्लियर कर लिया है, इसके बाद में एक और एक इजी ऑप्शन ये है कि काफ़ी हार्डवेयर स्टोर्स में ओपन शेल्व्स मिलते हैं जहां पर आप इनको लाकर असेंबल कर सकते हैं. और अगर जो आप कंपेयर करोगे जो ओपन शेल्व्स है ये काफ़ी सस्ते में मिलते हैं कंपेयर टू अगर जो आप एक कस्टम बिल्ट कैबिनेट बनवाना चाहते हो. तो अगर जो आप कंपेयर करोगे प्राइसेस तो जो सुपरमार्केट्स में मिलते हैं ओपन शेल्व्स ये काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे. और अगर जो आप लाकर इनमें जो चीज़ें हैं सामान है इसको अच्छी तरह से स्टोर करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं जो कंटेनर्स होते हैं टब्स होते हैं उसको यूज़ करके. और जितने भी छोटे छोटे सामान हैं आप इसमें ईज़ली रख सकते हैं. उसके बाद में आप क्या करें, जितने भी सामान उस टब में हैं एक लेबल लगाकर अपने उस टब में चिपका दें ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी आइटम या इक्विपमेंट या फिर टूल को ढूंढ रहे हो आपको क्लियरली लेबल देखकर पता चल जाएगा कि किस टब में स्टोर्ड है. और उसके बाद में ये टब्स आप इजीली स्टोर कर सकते हैं ओपन शेल्फ्स में. तो इतना ही आसान है और कुछ करके आप इतना ही कुछ करके अपने गैरेज को एक अलग लुक दे सकते हैं.
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
4: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
6: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark. The best bench in business.
7: Bunnings has lowest prices nailed.
8: Keep warm with solid energy 15 litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Commissions apply. See website for details.
9: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben. Feed your mission.
10: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
11: IKEA.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
1: ये जुगाड़ जंक्शन तो है ही आपके लिए हम पर, लेकिन आपको बता दें 11 बजे से देसी बिज शाउट आउट भी रहेगा जिसके लिए आप अभी से अपने जो बिजनेस डिटेल्स हैं हमारे पास में 5599 पर मैसेज कर सकते हैं. याद रहे 11 पर आपके लिए आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे उन्हें. और अगर जो आप करवाना चाहते हैं कुछ प्रमोशंस तो 5599 पर अपने बिजनेस के डिटेल्स आप अभी से ही हमारे पास में भेज सकते हैं.

आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही, और आपको ये भी बता दें कि सिंडी और उजबे ने बातें की हैं शनील लाल के साथ में ऑन द पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड, जहां पर ब्रेकिंग बैरियर्स को लेकर शनील लाल ने LGBTQ और उनके राइट्स को लेकर काफ़ी बातें की हैं। कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का ये जो अनफिल्टर्ड का पॉडकास्ट है, ये ऐसा ही काम करेगा अगर जो आप जब इसे सुनेंगे। तो सुनने के लिए आप सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिंक मिलेगा जिससे आप जाकर चेकआउट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम तो सिर्फ आम लोग हैं, तो ये जो पॉडकास्ट है जब आप सुनेंगे आपकी सोचने की नज़रिया को ये बदल देगा। इसके साथ साथ इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप भी आप करना चाहते हैं तो BF लिखकर 5599 पर भेजिए। इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि देसी बिज शाउट आउट इज़ अप नेक्स्ट, अभी से आप अपने जो बिजनेस डिटेल्स हैं हमारे पास में भेज सकते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि 11 बज रहे हमारे स्टूडियोज में हम पर. अब समय हुआ आपके लिए लेकर आए देसी बीज शाउट आउट. तो ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं इस आवा पर भी. और लेट्स गेट स्ट्रेट टू बिजनेस. जबकि हमने कहा था इस आवा पर आपके पास में मौका है अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने का, जबकि खासकर आपका कोई स्मॉल वेंचर है या फिर होम बेस्ड बिजनेस है. तो सबसे पहला पहल जो मैसेज आया है, ये पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने घर के लिए कोई ऐसा स्टैंड आउट फर्नीचर चाहिए जो एक सेंटर पीस हो और काफ़ी जगहों से, काफ़ी घरों से अलग हो. तो ये सभी कुछ के लिए आपको सिर्फ जाना होगा या फिर कॉन्टेक्ट करना होगा होम डिवाइन NZ को, क्योंकि ये जितने भी फिनिशिंग्स हैं, होम फिनिशिंग्स, ये डायरेक्टली सोर्स करते हैं राजस्थान, इंडिया से. तो अगर जो आप तलाश में हैं कोई ऐसे फर्नीचर की जिसको आपको सेंटर पीस बनाना है, तो आप डिवाइन होम डिवाइन NZ को कॉल करें. और इनके पास में जो फिनिशिंग्स हैं, ये डायरेक्टली सोर्स किए गए हैं राजस्थान, इंडिया से, यानी कि सीधा सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर तक कोई मिडल मैन नहीं है. और आप अगर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तो ज्योति को 0274779277 पर कॉल करें. ज्योति को 0274779277 पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में ऐसे यूनिक आइटम्स है, जो फर्नीचर्स है जो आपके घर का इंतज़ार कर रही है. ऑल यू हैव टू डू इज़ गेट इन टच. और अगर जो आप अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा एलिगेंट पीस आपको चाहिए जो डायरेक्टली सोर्स किया गया है राजस्थान, इंडिया से, तो ज्योति को 0274779277 पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके साथ में हमारे पास में एक और एक मैसेज आया है. नमीश ने मैसेज किया है, ये लोकली एक बिजनेस रन करते हैं जिनका नाम है द लोकल गाइस टेस्ट एंड टैग. ये ऑन साइट इलेक्ट्रिकल टेस्ट और टैग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद कंप्लीट फायर सेफ्टी चेक्स. तो अगर जो आपके पास में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जिसका आप वारंट इंतज़ाम करवाना चाहते हैं या फिर कोई सेफ्टी चेक्स आपको करवाने हैं, तो आप नमीश को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ऑन साइट ये आपके लिए फायर एक्सटिंग्विशर को सर्विस कर सकते हैं, साथ में फायर हाउस रील को टेस्ट भी कर सकते हैं और फायर ब्लैंकेट्स को आपके लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ऑल कंप्लीटेड एट योर प्रेमिसेस, यानी कि आप ही के साइट पर आकर ये सारा का सारा काम कर जाएंगे. और अगर जो आप इनको 0210277 0160 पर कॉल करेंगे या फिर namish.chand@thelocalguys.co.nz पर ईमेल करेंगे, तो ये आपको फ्री कोटेशन भी देंगे. याद रहे 0210277 0160 पर कॉल करें या फिर namish.chand@thelocalguys.co.nz पर आप ईमेल करें, ये आपको फ्री कोटेशन भी दे जाएंगे. ये सभी कुछ हमारे साथ में देसी बीज शाउट आउट में.

0: हम पर यह है देसी बिज शाउट आउट, और आपके पास में मौका है अगर जो आपको भी अपने बिजनेस के बारे में एडवर्टाइज करना है और ओनिया, हम यहां से आपके डिटेल्स, अपने आपके बिजनेस डिटेल्स को और लिसनर्स तक पहुंचाए, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है 5599 पर जरूर मैसेज करें। दिस इज द गोल्डन आवर टू डू इट। इसके साथ में अगर जो घर से भी कोई आप होम बेस्ड बिजनेस वेंचर चलाते हो, शायद आप ब्यूटी पार्लर घर से चलाते हो या फिर फ्लावर्स इत्यादि आप घर से बेचते हो, इसके अलावा ट्यूशन्स आप देते हो, इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे पास में भेज सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कौन कौन से एरियाज़ में आप अपना जो सर्विसेज है प्रोवाइड करते हो। तो जब आप अपना जो मैसेज हमारे पास में भेजें, खासकर जिस एरिया में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इसके बारे में ज़रूर भेजिएगा ऑन 5599।
1: टोस्ट, कॉफी और हम का एनर्जी। सुबह हो गई, Saturday breakfast on Hum.

आपको बता दें, देसी बिज शाउट आउट में ATS इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील गेट से करते हैं। फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील ऑन न्यू बिल्ड होम्स और इसके अलावा रेनोवेशंस भी ये करते हैं। तो ATS इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड जो आपके लिए स्टील गेट्स को भी इंस्टॉल करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, और साथ ही साथ में अगर जो आपका न्यू बिल्ड होम है तो इसके यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर आपके एग्जिस्टिंग होम पर मरम्मत रेनोवेशन की काम है तो स्टीवन को 0221998959 पर कॉल करें। स्टीवन को 0221998959 पर आप कॉल करें और ये हैप्पी रहेंगे टू डू अ कोट। इसके साथ साथ अगर जो आपके पास में कोई ग्रेनी फ्लैट है या फिर कोई अलग से फ्लैट है जिसको आप टू लेट करना चाहते हैं, या फिर आप एक आर्टिस्ट है, आपके पास में ढेर सारे पेंटिंग्स हैं जिन्हें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 5599 पर आप ज़रूर मैसेज करें। देसी बिज में आपके बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे।

0: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये मैसेज एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।
1: Saturday Breakfast on Hum.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: If it's savings you want, it's savings you'll find at Briscoe's with Super Size. Store-wide savings for the whole house until Sunday. So hurry in, grab a basket or trolley and bag Super Size store-wide savings. Only till Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today and tomorrow. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
3: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
2: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today and tomorrow from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland council.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी All Together Auckland।
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
7: Here you go.
8: Thank you.
9: I reckon we should do some advertising.
8: Great. I like doing advertising.
9: I love doing advertising.
8: What about?
9: Thomason Does Advertising.
8: And what should it say?
9: Thomason Does Advertising.
8: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
9: Nah, keep it simple, I reckon.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि 11:20 हो रहे हैं. ऐसे में यह है देसी बिज शाउट आउट. और अब की बार आपको बता दें, आपके घर के हीट पंप्स के इंस्टॉलेशन और साथ में सर्विसिंग के लिए आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं मो जहीर को. अगर जो एग्जिस्टिंग हीट पंप्स है और आपको सर्विसिंग की ज़रूरत है क्योंकि विंटर में सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मो जहीर को कॉल करें 02208018817 पर. 02208018817 पर आप मो जहीर को कॉल करें. ये आके आपके लिए कोटेशन भी देंगे और घर पर आपके जो काम है नेसेसरी सर्विसिंग का, ये भी करके जाएंगे. और इन ऑर्डर टू डू दैट आपको नंबर सिर्फ याद करना है मो का. मो जहीर इज़ अवेलेबल ऑन 02208018817. इसके साथ साथ में आपके पास में भी कोई बिजनेस है जो आप होम बेस्ड है या फिर आप इसके बारे में शाउट आउट देना चाहते हैं, तो 5599 इज़ द नंबर. क्योंकि ऐसा कम होता है जहां पर आप सिर्फ टेक्स्ट करें और उसी टेक्स्ट बेसिस पर आपके बिजनेस को ऑन एयर प्रमोट किया जाए. तो दिस इज़ द आवर, यही मौका है आपके पास में. अगर जो कोई होम बेस्ड बिजनेस है या फिर आपके कोई फ्लैट है जो अवेलेबल है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, इट्स अवेलेबल फॉर टेनेंसी, तो ये सभी कुछ 5599 पर आप अभी से मैसेज करें.

हम पर मैं हूँ अभी विद सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, जबकि 11:30 बज रहे हैं। ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और देसी बिज शाउट आउट में एक और एक टेक्स्ट मैसेज आया है। पीवी लिमिटेड प्रोफेशनल हैंडीमैन सर्विसेज ओकलैंड में बेस्ड है। आपको घर के लिए कोई रिपेयर्स करवाने हैं, स्मॉल रेनोवेशन जॉब्स, और आसानी से जल्द से करवाने हैं और ठीक तरीके से करवाने हैं, तो पीवी लिमिटेड ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं रिलायबल हैंडीमैन सर्विसेज अक्रॉस ओकलैंड। और रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग है, अफोर्डेबल प्राइजेस भी है, क्लीन एंड क्वालिटी वर्कमैनशिप का भी ये अश्योरेंस आपको देते हैं। कोई भी काम इनके लिए बहुत छोटा या बड़ा नहीं है। और अगर जो आपके घर पर कुछ फिक्सिंग की ज़रूरत है, तो पीवी लिमिटेड विल गेट इट सॉर्टेड फास्ट एंड प्रोफेशनली। आप कॉल कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं 02212027 14 पर, 02212027 14 पर, और ये आकर आपके लिए एक फ्री कोटेशन कर जाएंगे।

0: हम पर आप सुन रहे हैं, मैं हूं अवि और लेकर आया हूं देसी बीच शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। और ऐसे में आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि न्यूजीलैंड्स हाउसिंग मार्केट इज गोइंग थ्रू द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट डाउनटर्न इन 30 to 40 years। इसका यह मतलब हुआ कि जो हाउसिंग मार्केट है लगभग पिछले 30 या 40 सालों में सबसे बुरा चल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डाटा फर्म कोटेलिटी। और ऐसे में आप भी देसी बिज में अगर जो आप रियल एस्टेट एजेंट हो, रियल्टर हो और थोड़ा सा पुश चाहिए तो 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं।
1: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: गेट 70% ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक एट स्पा World's Clearance Center Sale Event today till Sunday.
5: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pools, swim spas, saunas, and pergolas on a first come basis.
4: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Center, 9 Sylvia Park Road.
6: Good news, tradies! This Saturday, Mitre 10 Mega Botany aaiye for a free sausage, supplier demos on site, or giveaways, range, convenience, or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dopahar 12 baje tak, at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: इस वीक के लिए देसी बीज शाउट आउट में बस इतना ही, और ऐसे में अगर जो आपको भी नेक्स्ट वीक इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो 5599 पर ही टेक्स्ट करना होगा। और लगे हाथों आपको बता दूँ हम म्यूज़िक स्टेशंस के बारे में, जो रोवा ऐप पर बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए। हम रिवाइंड है, जहाँ पर आप बॉलीवुड के 60s और 70s के वो गोल्डन तराने सुन सकते हैं। इसके साथ में 80s जुक बॉक्स, जहाँ पर आप 80s के ईरे के बॉलीवुड से जो गीत संगीत है इसे आप सुन सकते हैं। इसके अलावा फिजी भजन भी प्लेटफॉर्म है, जहां पर 24/7 आप अपने कन्वीनियंस पर स्ट्रीम कर सकते हैं फिजी भजन्स को। इसके साथ साथ चढ़दी कला है, पंजाबी हिट्स और फॉर ऑल योर पंजाबी पंपिंग नंबर्स, ये आप सुन सकते हैं चढ़दी कला पर। और इसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहां पर फिजी के प्रमुख आर्टिस्ट की आवाज़ों में फिजी के कीर्तन को गाए हुए एक कलेक्शन क्रिएट किया गया है, अंडा फिजी कीर्तन संग्रह। इसके साथ साथ राहत फ़तेह अली खान, इनका एक अलग फॉलोइंग है, तो इनके गाए हुए सूफी और कवालियों के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हम म्यूज़िक स्टेशन ऑन रोवा ऐप।

हम पर देसी बीज में एक और एक मैसेज प्यारा सा आया है देसी बीज शॉर्ट आउट में, तो इसे छोड़कर जा नहीं सकते। क्रिश मोइंग सर्विसेज फॉर ऑल योर लोन लोन ट्रिमिंग और साथ में गार्डनिंग के लिए, साथ में रबिश कलेक्शन के लिए, साथ में आपको हेजेस करवाने हैं ट्रिमिंग, या फिर वीड स्प्रेइंग करवाने हैं, या फिर किसी भी साइज़ का ट्री वॉक आपको ट्रिमिंग करवानी है, या फिर ट्री कटिंग करवानी है, ट्री फेलिंग करवानी है, माउंट वेलिंगटन से लेकर वायुकू तक ये सफ़र करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर जो आप चाहते हैं तो जितने भी आपके लोन्स हैं इनकी केयर के लिए, साथ में गार्डनिंग के लिए, इसके अलावा रबिश कलेक्शन, साथ में हेजेस, वीडिंग, वीड स्प्रेइंग और साथ में ट्री फेलिंग सर्विसेज के लिए कमल को कॉल करें 0211122617 पर। कमल 0211122617 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था, और ऐसे में हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर कल 12 पर होंगी, जब लेकर आएंगे आपके लिए जस्ट चिल. आज के लिए एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे. खुद का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. फिर मुलाकात होगी. टेक केयर, बाय.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: ड्राइविंग यू होम
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
5: वो भी I love you वाला।